सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 52 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

नाथ तू अनाथ को और अनाथ कौन मोसो। हे प्रभु, इस संसार में आपके सिवा तो कोई नहीं मेरा, और हमने तो ये सुना प्रभु आप तो अनाथों के भी नाथ हैं, तो फिर उनकी पुकार सुनिए ना।

प्रेम वास्तव में वह एहसास है, वह अनुभूति है, वह आनंद है कि जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तभी तो कहा गया है कि प्रेम की भाषा मौन होती है। प्रेम अगर यूं कहें कि सूरदास जी की वो लाइन याद आती है कि ज्यों गूंगे मीठे रस फल को मन अंतर मन ही भावे, तो अंतर मन ही बस उस एहसास को जानता है, कह नहीं सकता। शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि प्रेम को परिभाषित किया जाए, उसे जिया जाता है, समर्पित भाव से उसको महसूस किया जा सकता है। और जिसने एक बार प्रेम रस में डुबकी लगा ली, फिर भला निकलने का कहाँ मन करता है। सर्वस्व त्याग देने का वह मतलब प्रयास आदमी करता है और छोड़ भी देता है। सारे राशि ठाट वाट ऐशो आराम सब कुछ प्रेम के नाम कुर्बान। और ऐसा ही तो हुआ भक्त मीरा का। मीरा भाई जिस पल से उनके मन में प्रेम का एहसास जगा, बस वो उसी अपने इष्ट के लिए समर्पित हो गई। उन्हें कोई परवाह नहीं लोक लाज की, लुभमान मर्यादा की, कुछ नहीं, प्रेम सर्वोपर। और फिर तो ये बात उनके अंदर घर कर गई, रोम रोम में समा गई कि सूरदास की कारी कामर चढ़े ने दूजा रंग। एक बार प्रेम का रंग मीराबाई के उन्होंने अपने आप को रंग लिया तो फिर शाम के रंग में वो डूब गई, उससे कभी नहीं निकली और ना उन्होंने निकलना चाहा। सारी दुनिया को ये बताया कि प्रेम रंग सच्चा है और इसमें आनंद है। ऐसी लगन हुई कि मगन हो गई, दीवानी हो गई। और फिर तो वो सिर्फ श्याम गोपाल पास आठोयाम यही नाम यही रटना उनको लगी रहती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।

0: आप सुन रहे थे अभी संबिए स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी आपने, वे गायक स्वर थे हरिओम शरण, लक्ष्मी शंकर, अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल हरिहरन साथियों के। आज का वंदना कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चिंतन बंधु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज भक्ति संबंधी विचार। आलेख है खरक सिंह छोकर का और स्वर है राखी कटारा का।
1: संसार का प्रत्येक प्राणी शांति प्राप्त करना चाहता है। उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही चिंतन है। और यदि देखा जाए तो उसका हर समय का आचरण एक ही दिशा की ओर है, फिर भी दशा बदल नहीं रही है। सुख और शांति चाहते हैं, फिर भी अशांति और बेचैनी घेरे रहती है। सुख शांति प्राप्त करने के लिए मानव मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, गिरजाघरों में जाता है, संत महंतों के प्रवचन सुनता है, फिर भी उसकी तृष्णा का अंत नहीं हो रहा है। इसका कारण एक ही है कि मानव शरीर से कर्म से दिखावा करता है, उसके हृदय में अनेक विकार भरे रहते हैं। जब तक विकार दूर न किए जाएं, हृदय निर्मल निश्चल निष्कपट नहीं बनेगा, तब तक शांति की प्राप्ति कैसे होगी। मानव को एक चिंतन करना चाहिए कि क्या वो वास्तव में सुख शांति चाहता है। यदि चाहता है तो क्या कभी उसने भगवान के दरबार में आकर सुख शांति के लिए प्रार्थना की है। इसका निष्कर्ष यही निकल कर आएगा कि वो परमात्मा के पास भी सच्चा भक्त बनकर नहीं आया। भक्त वो होता है जो समर्पित हो, जिसका सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित होता है और वो स्वयं को भूल जाता है। जिसे प्रभु चरणों में ध्यान रहता है, ऐसी भक्ति कविराज धनंजय ने की थी, जिनके बेटे को सर्प ने डस लिया। पत्नी ने पूजन करते हुए कविराज को बुलाया, किंतु वे तो पूजन में भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें बुलाने वाले की आवाज ही सुनाई नहीं दी। वास्तविकता भी यही है कि जहां परमात्मा से साक्षात्कार हो रहा हो, वहां कान और कुछ नहीं सुन सकते। कविराज की पत्नी ने क्रोध के आवेश में आकर मरणासन्न बेटे को लाकर कविराज के चरणों में रख दिया और पत्नी ने कविराज को खूब उल्टा सीधा कहा। फिर भी कविराज भक्ति में लीन रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूजन संपन्न होने पर कविराज धनंजय की दृष्टि जब बेटे पर गई, तब वो बोले, हे भगवन, आप ही मंत्र हैं, आप ही तंत्र हैं, आप ही रसायन हैं और आप ही औषधि हैं। सब कुछ आप ही तो हैं। आपको छोड़कर मैं अन्यत्र कहाँ जाऊं। कविराज की भक्ति का फल साक्षात प्राप्त हुआ और उसी समय विष वेदना से पीड़ित बेटा निद्रा से मानो जाग उठा हो ऐसे उठकर बैठ गया। भगवान न किसी से प्रसन्न होते हैं, न किसी से रुष्ट होते हैं। जो भी उनके चरणों में ध्यान लगाता है, भक्ति रूपी नाव पर आसीन होता है, वो स्वयं संसार सागर से पार हो जाता है। आपको मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपके हृदय में सच्ची भक्ति है तो भक्ति का फल अवश्य ही स्वयमेव आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रभु का स्मरण करें। जापे कृपा प्रभु की होई, तापर कृपा करे सब कोई।
0: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में भक्ति संबंधी विचार। आलेख खरक सिंह छोकर का और वचन राखी कटारा का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

अरन। गायक स्वर है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर साथियों के। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

आप अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कहन से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों के थे। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप प्रातः 7:31 पर सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आज सुनिएगा ब्रज की माटी तोहे प्रणाम में भूतेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी। प्रस्तुत करेंगी रश्मि शर्मा। सुबह 9:00 सुनिएगा हिंदी वार्ता क्रम में अमित चतुर्वेदी से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। विषय होगा मनी म्यूल फ्रॉड एवं CKYC के संदर्भ में। ब्रज दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा वही सुबह 9:30 का। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुनिएगा पूर्वाह्न 11:00। प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की होगी। ब्रज लोकगीत दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी दीक्षा गुप्ता।

रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत भोलानाथ का बांसुरी वादन, और इसी कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित बिरजू महाराज जी का गाया ख्याल गायन राग ललिता गौरी में। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। 9:15 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम, और संध्या 6:15 पर कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी वृक्षारोपण करें पर्यावरण बचाएं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषय से संबंधित। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय होगा कृषि प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व। भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण समय रहेगा 6:45 का। ब्रज साहित्य कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। आज इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा में कवि जगदीश प्रसाद का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा 7:31 पर, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम

0: श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा शाम 7:31 पर, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात SMS भी आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे। युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में पुरुषोत्तम दास टंडन पुण्यतिथि, डॉक्टर VC राय जयंती एवं पुण्यतिथि, वन महोत्सव, पेड़ों का त्यौहार, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी और फिल्म संगीत भी आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम में। NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा उमंग दोपहर 2:30 पर। बहने कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में बहने सुनेंगी चर्चा, प्रकृति का श्रृंगार वृक्ष हैं, एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। इसी कार्यक्रम में शालू अग्रवाल काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगी, साथ ही कुछ घरेलू टिप्स और फिल्म संगीत भी बहने इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। कार्यक्रम आवो हवा सुनिएगा सुबह 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में घनश्याम वर्मा जानकारी देंगे मानव का पर्यावरण से संबंध विषय पर, और पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुनिएगा प्रातः 7 बजे। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से ग्वार की खेती के बारे में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, ग्वार की मांग बाजार में ज़्यादा होने की वजह से और इसकी खेती पर हमारे किसान भाई आजकल कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और दें क्यों नहीं, क्योंकि इसका बाजार भाव बहुत अच्छा इस समय किसान भाइयों को मिल रहा है। तो इसको अगर हम बीज के रूप में इसको उगाएंगे तो हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, और इसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार वर्षा भी कम हो रही है। हल्की फुल्की बरसात, 1-2 सिंचाइयों के माध्यम से इसकी खेती अच्छी प्रकार से ली जा सकती है। आवश्यकता बस इस बात की रहती है कि गर्मी के दिनों में आपने खेत की तैयारी के साथ ही 1-2 गहरी जुताई कर दी होगी, और मानसूनी वर्षा चूँकि हो भी चुकी है, 1-2 बारिश हो भी चुकी है, और इन 1-2 बारिश के बाद खेत को जोत करके पाटा लगा करके आपका खेत ग्वार की बुवाई के लिए लगभग तैयार माना जाता है। लेकिन तैयारी करते समय इस बात का विशेष करके ध्यान देना है आपको कि उस खेत में खरपतवार न रहें। अगर खेत में खरपतवार रहेंगे तो इसकी पैदावार को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। भूमि में कई तरह के कीड़े होते हैं जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो भूमि को उपचारित करना भी ज़रूरी होता है, और उपचारित करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अंतिम जुताई करते हैं खेत की तैयारी के लिए, उसमें 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियन चूर्ण 2% के रूप में मिलता है। तो मिथाइल पैराथियन चूर्ण की 25 किलोग्राम मात्रा को बुवाई से पूर्व अंतिम जुताई के समय बिखेर दें, और फिर जुताई के बाद पाटा लगा करके खेत आपका बुवाई के लिए एकदम तैयार माना जाएगा। जहाँ तक किस्मों की बात है तो लोकल स्तर पर ही इसकी ज़्यादातर किस्में हैं जो इनको किसान भाई अपना सकते हैं। जो भी किस्म उनको मिल जाए उसका बीज आप ले सकते हैं, और बीज उपचार भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी तरह का बीज हो लेकिन उसको बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए, क्योंकि अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए बुवाई से पूर्व प्रति किलो बीज को 250 PPM एग्रीमाइसिन या 10 PPM स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में 5 घंटे भिगोकर उपचारित करें। बीज को राइजोबियम कल्चर और फास्फोरस घोल का जीवाणु कल्चर से भी उपचारित कर लें, क्योंकि ये दो दालीय फसल है, इससे कि ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन में काम करती है, नाइट्रोजन हमें ऐसी फसल में कम देने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनको बोने की बात है, तो ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि मानसून जैसे ही प्रारंभ होता है उसके बाद खेत तैयार करके इसकी बुवाई कर दी जाती है, लेकिन इसकी बुवाई जो है 30 जुलाई तक करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर और किसान भाई थोड़ा सा इसकी बुवाई में देरी कर रहे हैं तो 10-15 अगस्त तक भी इसको बोया जा सकता है, और इससे अधिक देरी करने पर

0: जहाँ तक बीज दर की बात है तो 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इसकी बुवाई के लिए अच्छा रहेगा। अकेली फसल बोनी है, क्योंकि इसको मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जाता है, तो मिश्रित फसल के रूप में अगर आप बो रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए ठीक रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इसमें 10 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। जहाँ तक खाद और उर्वरक देने की बात है तो इसमें खाद विशेषकर कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दाने के लिए अगर आप ग्वार बो रहे हैं तो उर्वरक का इस्तेमाल आपको खेत में अवश्य करना चाहिए। 20 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस को इसको प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के पहले या बुवाई के समय ही किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में ग्वार की खेती के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। और साथियों, अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस अब से कुछ ही देर में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बरसात के इस गीत को। गीतकार थे रमेश शास्त्री, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और अब ये अगला गीत।

राजेंद्र कृष्ण के लिखे इन शब्दों को धुन से सजाया था संगीतकार सरल चौधरी ने, आवाजें थी लता मंगेशकर तलत महमूद साहब की। फिल्म प्रेम पत्र के अभी आपने इस गीत को सुना, और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत। साथियों, इस वक्त आप आनंद दे रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से।

श्रीमान सत्यवादी, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीत को लिखा था गुलजार दैनवी ने और दत्ताराम का संगीत था। अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी लता मंगेशकर महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में फिल्म नाग मंदिर का ये गीत। आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ यहीं पर संपन्न होता है। साथियों 7:18 होने को है, कुछ ही पुलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण।

0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
2: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्य

0: कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
2: वो लोग माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
3: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना।

0: मैं 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
1: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? तो बस बढ़िया ही रहें। हम तो बस यही राधे रानी तो कामना करे हैं कि आप सब बढ़िया रहें, राजी खुशी रहें, स्वस्थ रहें। जब तन मन स्वस्थ होएगा, बढ़िया होएगा स्वास्थ्य, तो वही तो फिर सब कुछ आनंद आनंद आपको महसूस भी होगा, है ना। और कहे हैं ना कि जो स्वस्थ शरीर होवे है तो वामें मन भी जो है वो स्वस्थ ही वास करे है। तो अब देखो, आज 1 जुलाई है और जुलाई के आरंभ से ही देखो, आज पहले ही दिन वर्षा

अबे रेती है रही है, घटाएं छा रही हैं और मानसून ने अब दस्तक दे देनी है। तो यानी कि अब आप हम सब उनको प्रकृति को जो भीषण तपिश हम और आप गर्मी की सह रहे हते झेल रहे हते, तो वहाँ से अब जो है हम सबन को राहत मिलवे शुरू हो जाएगी। तो अब देखो एक बात तो हम ज़रूर कहेंगे साथियों आपसे कि अब देखो जुलाई को महीना आ गयो है, तो अपने आसपास अब जैसे ये जो मौसम है पेड़ पौधा उनके लगावे कितना बहुत ही बढ़िया है। तो आप अपने सब आसपास जो है कहूँ जगह हो या आपके आसपास देखें है ना, और तो पेड़ पौधा जरूर लगावें, पौधा रोपण करें, क्योंकि जब अपनी प्रकृति बढ़िया होगी हरी भरी होगी तो वहीं तो वर्षा को जो है आनंद दुगनो है जाएगा, चौतरफा हरियाली हरियाली। अब ऐसे तो अपने ब्रजधाम तो अगर देखो जाए तो वन उपवन को अनुपम सौंदर्य देखने को मिले। हालांकि अब वो बात अब अलग है कि बदलते समय में अब वो पहले ऐसी बात ना आए, लेकिन हती तो ही है ना। तो अब धीरे धीरे हम सब आओ अपने इस भूमिका को निभाएं और आनंद लें प्रकृति को, और प्रकृति के संग संग ब्रजमादरी कार्यक्रम नेकू ना आप सबन को भूलना है सुनवे की ताई। हाँ हम ये बात हम जरूर कहेंगे आपते, तो अपने ब्रजमादरी कार्यक्रम बस सुनते रहो आनंद लेते रहो। और आज देखो आपको बड़े बहुत अच्छा लगेगा जो कार्यक्रम आपके ताई लेके आए हैं, बुधवार है आज, और ये तो आप जान ही हैं कि हम बुधवार को खासकर आपके ताई लेके आवे हैं विशेष कार्यक्रम ब्रज की माटी तो हुए प्रणाम। तो भाई ये बात तो है, ब्रज की माटी तो कहा कहे वो ब्रज के ब्रज रज अगर वाको स्पर्शो मिल जाए तो जीवन धन्य है जाए है। तो आज यह कार्यक्रम में भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा के बारे में जानकारी दे रही हैं रश्मि शर्मा। तो फिर आओ हम सब सुने और आनंद लें यह कार्यक्रम को सुन के।

0: ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। यहाँ मथुरा नगर में भगवान को प्राकट्य भयो या इकाजे भगवान श्री कृष्ण की लीलांते जुड़े भय मंदिर यहाँ विद्यमान है, किंतु या ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व के कछु ऐसे मंदिर हैं जो दर्शनीय हैं। ऐसो ही एक मंदिर है भूतेश्वर महादेव को, जो कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरायांज देवत्व क्षेत्रपालो भविष्यसि, त्वयि दृष्टि महादेव मम क्षेत्र फलम लभेत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव आप मथुरा के संरक्षक होंगे, आपके दर्शन के बाद ही हे महादेव लोग मेरे दिव्य धाम के फल को प्राप्त करेंगे। भगवान शिव के या धाम के आधार पे मथुरा के या स्थान को भूतेश्वर कहो जाए है। महादेव जी के श्री विग्रह अति प्राचीन हैं, उन्हें पश्चिम दिशा को संरक्षक मानो गयो है। या संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं मंदिर के सेवायत।
1: सबसे पहले तो बाबा श्री भूतेश्वर महादेव की जय। भूतेश्वर महादेव ब्रजमंडल के कोतवाल हैं, जैसे मथुरा की ब्रजमंडल में जो बैठे हुए हैं बाबा भूतेश्वर महादेव केंद्र में स्थापित हैं, सभी प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल का काम ही रक्षा करना होता है इसलिए, और भोले बाबा तीनों लोक में श्रृंगार करता है लेकिन यह पालन करता है महादेव बाबा, तो सब तरीके से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मात्र एक लोटा जल से, एक दीपक से, एक बेलपत्री से ठाकुर

जी को मनाया जा सकता है, बाकी उनके लिए कुछ बड़ा करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और भोले बाबा ब्रज क्षेत्र के कोतवाल इसलिए हैं क्योंकि मथुरा नगरी जो है इसका नाम है, पुराने के नाम इसका मधुपुरी है, मधु के नाम पर। मधु और दैत्य और केटव एक दैत्य थे, दोनों भाई थे जो कि मथुरापुरी पे राज करते थे। मथुरापुरी सप्तपुरियों में सबसे बड़ी है, तो मथुरापुरी पे राज करते थे। तो उसके बाद में मधु का पुत्र हुआ लबड़ासुर। मधु ने भगवान शिव से भूतेश्वर आदि की आराधना करके उनका त्रिशूल से शूल प्रकट करवा के उनसे त्रिशूल में वरदान मांगा और भोलेनाथ ने उसको दिया। उसके बाद एक पीढ़ी के लिए उसका वरदान था कि एक पीढ़ी तक ये आपके त्रिशूल रहेगा। तो मधु तो इतना दुराचारी नहीं था। उसके बाद में लबड़ासुर आया, लबड़ासुर ने उसी त्रिशूल के लेके पूरी तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया और सभी देवता परेशान होकर के इससे जूझने लगे और भगवान शिव की शरण में गए। तो राम की आज्ञा पा करके राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी मथुरा आए और मथुरा आकर उन्होंने भूतेश्वर महादेव की आराधना करी। फिर उसके बाद में लबड़ासुर का वध किया, फिर शत्रुघ्न जी अपना राज्य स्थापित यहाँ पर किया। तो मधुपुरी जो है राक्षसों की नगरी है, यहाँ राक्षसों ने बहुत राज किया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो सभी देवताओं ने इस नगरी को श्री कृष्ण की नगरी के नाम से संबोधित किया। तो दैत्यों में क्या है, एक जलन सी पैदा हो गई थी, बोले कि हमारा मधुपुरी हमसे छिन गया। तो दैत्यों ने आक्रमण किया। अब जहाँ कहीं भी आक्रमण या कोई होता था, गैंग होता है, कोई सामाजिक चीज को ठेस पहुँचाता है, तो वहाँ एक पुलिस बल तैनात किया जाता है। उसी प्रकार भोलेनाथ ने पूरे ब्रज के अंदर चार चौकियाँ स्थापित की, कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर और स्वयं मथुरा में कोतवाल बन के बैठे ब्रज की क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो भूतेश्वर महादेव यहाँ पर रक्षा के लिए बैठे हुए।

0: जब भगवान शंकर ब्रज में भगवान कृष्ण के दर्शन करवे के काजे आए तो बिन ने चार स्थानन पे वास करो, मथुरा के भूतेश्वर, वृंदावन के गोपेश्वर, नंदगांव के आशेश्वर, गिरिराज जी के चकलेश्वर। मथुरा के प्राचीन शहर में बसो भूतेश्वर महादेव मंदिर अपनी संस्कृति की तरह ही समृद्धि और जीवंतता को इतिहास समेटे भये है। भूतेश्वर नाम अपने आप में बहुत महत्व रखवे वारो है, या को अर्थ है सभी प्राणीन को स्वामी या तत्वन को स्वामी। भूतेश्वर महादेव को मंदिर भूतेश्वर चौराहे के समीप स्थित है। मंदिर के दो प्रवेश द्वार हैं और मंदिर की वास्तुकला दर्शनीय है। यह विशिष्ट उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली को उदाहरण है। विस्तृत नक्काशी, अलंकृत शिखर और प्राचीन प्रस्तरण पे विवरणों सुशोभित है। भूतेश्वर महादेव ब्रज के चार क्षेत्रपालन में ते एक हैं और मथुरा के चार प्रमुख महादेवन में प्रथम पूज्य महादेव हैं। इन्हें मथुरा को कोतवालों कहे जाए है। मथुरा में पधारे श्रद्धालुओं की ब्रज यात्रा तब तक अधूरी है जब तक वे भूतेश्वर महादेव के दर्शन न करें। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने नंदीश्वर जी को पृष्ठ भाग दिखाई दे है। नंदीश्वर अपने आराध्य यानी भूतेश्वर महादेव के सन्मुख ही सेवा में रत हैं। मंदिर को गर्भगृह 100 वर्ग मीटर में फैलो भयो है। भूतेश्वर महादेव के शिवलिंग के संगई वीरभद्रेश्वरों विराजित हैं। मंदिर में भोलेनाथ को परिवार भी विराजित है, जामे भगवान श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी और नंदीश्वर जी की प्रतिमा है। वहीं दूसरी ओर श्री हनुमान जी और नारायण जी की भी प्रतिमा को दर्शन हुए है। यह संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं मंदिर के सेवायत।
1: ये मधु और केतम नाम के दो दामक थे, जिन्हों का कि विष्णु भगवान से 12 वर्ष तक युद्ध हुआ था। तो केतम को विष्णु भगवान ने छल से मार लिया था। वो उससे बोले कि ऐसा है, आप केतम हमसे वरदान मांगिए। उन्होंने कहा हम तुमसे वरदान क्यों मांगे, हम क्या आपसे हारे हुए हैं। तो विष्णु भगवान बोले, तो फिर बोले हम तुमको वरदान दे सकते।

0: बोले ठीक है। उन्होंने तीन बार तिरवाचा भरी तो विष्णु भगवान ने ठीक है भाई आप किसके आपके इष्ट कौन है, उन्होंने सेब दे हम तो। जब ये हो गया तो उन्होंने उससे सीधा कह दिया, बोला अपना शीश काट के हमको दे दीजिए। ये ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुए थे दोनों और मधुनी को प्रकट किया है। केटप को तो छल से मार लिया था, मधु ने प्रकट किया है। जो केशव देव की यहाँ के राजा हैं वो विष्णु भगवान के रूप में। ये कोतवाल है, बगल में वीरभद्र हैं, गोदी में गणपत गणेश पार्थिव है और भूतेश भैरव भी इनको कहते हैं। क्यों? माँ कात्यायनी शक्तिपीठ नीचे है, पिंड की रक्षा के लिए भूतेश भैरव भी है। ये है
1: मंदिर की परिक्रमा में सर्वप्रथम महामृत्युंजय भगवान को मंदिर है। वहीं आगे बढ़वे पे पृष्ठ भाग में कछु और नवीन मंदिरन को निर्माण भयो है, जिनमें शिव परिवार मंदिर, नवग्रह मंदिर, शनिदेव मंदिरों हैं। पीपल वृक्ष, वट वृक्ष मंदिर की शोभा बढ़ाए रहे हैं। समय समय पे श्रद्धालु विशेष तिथि विशेष वारन पे इन वृक्षों की पूजा करे हैं। परिक्रमा में दूसरी ओर शिव परिवार मंदिर, श्री गिरिराज जी को मंदिर तथा मां काली को मंदिर दर्शनीय है। यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाना जाए है। वर्तमान समय में यहां पाताल देवी के दर्शन हुए हैं। लंका पर विजय प्राप्त करवे की काजे जा प्रकार ते भगवान राम ने रामेश्वर महादेव की स्थापना करी और विजय श्री प्राप्त करी, वही प्रकार से भगवान श्री राम की आज्ञा ते शत्रुघ्न जी ने महादेव की पूजा कीनी और शक्तिशाली और आताताई दैत्य लवणासुर की हत्या कर मथुरा को दैत्यन ते मुक्ति दिवाई और बाकी बात यहाँ अपनो राज्य स्थापित करो। त्रेता युग में मधु और कैटब दो राक्षस हते जिनको वध माता चंडी ने करो। मधु को पुत्र लवणासुर भयो, लवणासुर ने तपस्या कीनी और भगवान भूतेश्वर से अजय यानी त्रिशूल के रूप में वरदान मांगो। भगवान शिव ने वकु वरदान दियो कि जब तक त्रिशूल तुम्हारे पास रहेगो कोई तुम्हारो वध ना कर सकेगो। वरदान मिलवे के बाद लवणासुर मृत्यु के भय से मुक्त है गयो और मथुरा में आतंक मचाए दिनो। ऋषि मुनि के यज्ञ में बाधा पहुंचावे लगो और बिनकी हत्या उकरण लगो। वाकी आतंक ते भयभीत भय तब वे अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री राम से विनती कीनी। तब भगवान राम ने शत्रुघ्न जी यहाँ भेजो। शत्रुघ्न जी ने तीन बार लवणासुर से युद्ध कीनो किंतु विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाए। तब शत्रुघ्न जी हताश है के वापस अयोध्या आ गई। तब श्री राम ने उन्हें वापस मथुरा भेज दियो और युद्ध से ठीक पहले भूतेश्वर महादेव की अर्चना की बात की। जा प्रकार लंका पर चढ़ाई के पूर्व भगवान राम ने रामेश्वरम जी की पूजा कीनी, वही प्रकार से लवणासुर ते युद्ध करवे ते पूर्व शत्रुघ्न जी ने भूतेश्वर महादेव की पूजा कीनी और उन्हें विजय श्री प्राप्त भई। भूतेश्वर महादेव केदारनाथ जी के उपलिंग के रूप में पूजित हैं। या संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं परम वंदनीय परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी।
2: शिव पुराण में लिखा है कि किसी भी ज्योतिर्लिंग का एक महीने तक लगातार पूजन अर्चन कर ले तो वह किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। अब सुन लीजिए, उसी क्रम में यह लिखा है कि उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ, वो केदारनाथ में रहकर एक महीने तक उनके अर्चन पूजन का जो फल है वही फल मथुरापुरी में भूतेश्वर महादेव का दर्शन करने से एक महीने की सेवा करने से हो जाता है। मथुरा में भूतेश्वर महादेव का एक महीने तक पूजन करे, नित्य प्रति अभिषेक करे, पूजन करे तो उसे द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना। केदारनाथ नहीं जा सको तो भूतेश्वर का दर्शन कर लो, केदारनाथ जी हो गए। ब्रज सम और को नहीं धाम, ब्रज में सब आए, तो जिनकी निष्ठा है उनके लिए यह भी साधन है।
1: श्रावण मास में श्रद्धालु

0: काल से ही अधिकाधिक भक्त भगवान भोलेनाथ को दर्शन प्राप्त कर पुण्य फल की प्राप्ति करना चाहे हैं। या प्रकार से श्रावण के सोमवार में विशेष रूप से भक्त जन यहाँ पूजा अर्चना करवे के काजे आमे हैं और श्रावण मास में भोलेनाथ भगवान के विशेष रूप से बंगलाऊ सजाए जाए हैं। या संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं मंदिर के सेवायत।
1: कोई फूल गमला सजाया जा रहा है, कोई बर्फ का श्रृंगार कर रहे हैं डबल में, कि कोई केले का श्रृंगार है, इस तरीके से श्रृंगार होते हैं जिनमें अत्ते होते हैं। ठाकुर जी को दूध दही पैरों से स्नान किए जाते हैं, सामने फिर शाम को श्रृंगार चलाए जाते हैं, फिर उनका बंगला किया जाता है। कोई फूल गमले से या केले का बंगला हो या फैनियों का बंगला हो, जी हाँ फैनी गेवड़ों का बंगला बनता है।
0: जहाँ श्रावण मास में विशेष रूप से पूजा अर्चना करने को विधान बताया गया है और वही प्रकार से भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि के पावन पर्व पे विशेष रूप से विनके अभिषेक और छप्पन भोग के दर्शन कराए जाए हैं, वही सायकाल को भोलेनाथ की बरात के दर्शन कराए जाए हैं, जामे सभी भक्त जन हर्षोल्लास के संग सहभागिता करे हैं और आनंद से भोले की बरात में झूम उठें, नाच उठें।
2: रोज होता है कि 3 बजे मंदिर खोल दिया जाता है, फिर श्रृंगार किया जाता है और फिर 5:30 पे आरती होती है। पर ये कि शिवरात्रि पे ये कांवरें आती हैं यहाँ पे, तो 3 दिन पहले कांवरें शुरू हो जाती हैं और ये कि इसमें मंदिर बंद नहीं होता है, ना श्रृंगार होता है 2-3 दिन तक, ना श्रृंगार होता है। फिर 12 बजे से मंदिर खुल जाता है, वही 5:30 फिर थोड़ा श्रृंगार करके आरती की जाती है और फिर उसके बाद वही कांवर चढ़ती हैं, 12-2 बजे तक जल चढ़ता है, फिर उसके बाद श्रृंगार किया जाता है बाबा का, जैसा भक्त कोई करवाना चाहता है अपनी इच्छा से, इच्छानुसार श्रृंगार करवा के फिर उसके बाद पट खोल दिए जाते हैं। और फिर ये कि शिवरात्रि पे मतलब कि जैसे आरतियाँ होती हैं उससे कुछ विशेष आरतियाँ 5 आरतियाँ की जाती हैं, एक सुबह की होती है संध्या आरती और फिर 4 संध्या आरती की जाती है शाम को, जो एक आरती से पहले होती है, एक आरती के बाद होती है, एक जब बारात जाती है फिर प्रस्थान करती है वापस आके लड़की के घर पे, फिर वो आरती की जाती है उनका विवाह करके, फिर एक आती है शयन आरती की जाती है, फिर उसके बाद जब सारी रस्में उनका विवाह हो जाएगा सब कुछ रहेगा तब एक वो आरती होती है, ऐसी ये सारी आरती की जाती है। और फिर उसके बाद जागरण किया जाता है, जो शिव पार्वती होती है उनका कन्यादान किया जाता है, सारी रस्में की जाती हैं, ऐसे पूरी रात जागरण करा जाता है। हाँ जी, भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी सारी जैसे कि असली शादी में सारी रस्में की जाती हैं, वैसे भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी वो सारी रस्में की जा रही हैं। नीचे जो हमारे यहाँ शक्तिपीठ है, 11वां शक्तिपीठ उमा कात्यायनी शक्तिपीठ, वहाँ पे ये कि एक दीदी में वहाँ पे माँ आई थी, तब वहाँ पे चली थी कि अचानक ही सबने सोचा था कि यहाँ पे माँ की शादी करते हैं, तो तब वहाँ से हमने रस्में शुरू करी थी। फिर उसके बाद होती है खप्पर भरा जाता है, मतलब जैसे नई दुल्हन की रस्म होती है रसोई की, वैसे ही वो की जाएगी। खप्पर मतलब इसके अंदर कड़ी चावल बनाए जाते हैं, जैसे कि अब आपको पता ही है रसोई की रस्म की जाती है, पर ये शिव जी की विवाह है, दोनों का एक साथ विवाह किया जाता है इस मंदिर में, भूतेश्वर महादेव मंदिर में। तो खप्पर भर के जो माँ का खप्पर होता है हाथ में, उसमें ये खप्पर भरा जाता है, इसमें कड़ी चावल ही महत्वपूर्ण होते हैं जो बनाए जाते हैं, उससे उसी को ये खप्पर बोला जाता है, जो कड़ी चावल खप्पर में भरे जाते हैं, इससे पूरा विवाह संपन्न होता है।

भूतेश्वर महादेव युगन युगंते यहाँ विद्यमान हैं और ये मथुरापुरी के रक्षक हैं। याइलियाँ ये मथुरा के कोतवालों कहे जाए हैं। ये ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ शिव और शक्ति दोनों ही पूजित हैं।

तो अभय जो है आप आनंद ले रहे थे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम को सुन के। और आज हम सबन ने जानकारी ले ली थी रश्मि शर्मा थे भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा के बारे में। और अब कार्यक्रम में आओ आगे बढ़ें और सुने जे लोकगीत।

तो शालिनी शर्मा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस लोकगीत को। आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम जय लोकगीत के संगे यहीं पे शाम ले है। तो आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

0: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा

0: सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम

0: समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
0: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
2: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साथियों, आपने सुना ये कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म काला बाजार से था। आवाजें थीं गीता दत्त मोहम्मद रफी साहब की, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था SD वर्मन ने। और अब कार्यक्रम का आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अनजाना फिल्म के गीत को लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

चांदी फिल्म में ये आवाज़ें थी अर्शव भोसले विनोद राठौर की। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी अजनबी फिल्म के गीत को किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

बेटा फिल्म में ये इस गीत को आवाज़ें दी थी लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार ने। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। और अब कार्यक्रम का आइए साथियों सुनते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मोहरा से।

इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत बिजू शाह का है और इस वक्त आप आनंद दे रहे हैं फिल्म मोहरा के इस गीत को सुनकर।

0: आपने सुना अभी मोहरा फिल्म के गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत का यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: साथियों लीजिए, प्रस्तुत है हिंदी वार्ता क्रम में आज अमित चतुर्वेदी से ली गई ये वार्ता, जिसका विषय है मनी फ्यूल फ्रॉड एवं CKYC के संदर्भ में। इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
4: श्रोताओं, जीवन में जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता चाहे स्वास्थ्य की हो, जागरूकता चाहे धन को संभाल के रखने की हो, बचत करने की हो, अच्छी आदतों की हो, तो अगर हम जागरूक हैं तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां कोई भी हो उनको पार पा जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, उनसे हम दो चार हो जाएंगे। लेकिन जागरूकता नहीं है, आपने देखा होगा कि लिखा रहता है बसों पर, ट्रकों पर कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वो दुर्घटना सिर्फ रोड पर नहीं होती, वो जीवन में कहीं भी हो सकती है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं, आजकल जो हमारे अकाउंट होते हैं बैंकों में, उन अकाउंटों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो जाती है, कई बार जाने में, कई बार अनजाने में। तो जाने और अनजाने में कितनी सावधानी हमें रखनी है। अगर हम मेरा अकाउंट है तो निश्चित तौर पे उसकी देखभाल करना, उसको बचा के रखना, उसको उसी काम में लेके आना जिसके लिए वो हमने खुलवाया है। तो जागरूकता की बात हो रही है, अगर आप जागरूक हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो टीवी देखते हैं, तो मनी म्यूल न बने ऐसा करके एक सावधानी वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मनी म्यूल बन जाना क्या है, इस पर आज हम वित्तीय साक्षरता वाले कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ अमित चतुर्वेदी जी हैं, आप इनसे परिचित हैं। जब भी वित्तीय साक्षरता की बात होती है, सावधानी की बात होती है लेन देन में अपने बैंक अकाउंटों में, तो हम इनको बुलाते हैं, उनसे हम कुछ सुझाव लेते हैं। तो अमित जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, फिर से नमस्कार।
5: नमस्कार सर
4: जी। तो ये जो मनी म्यूल वाला काम चल रहा है आजकल, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बताइए थोड़ा सा ये इसको क्या कुछ है और क्या इसमें सावधानी एक आम नागरिक की बनती है इसमें?
5: सर ये जो है ना मनी म्यूल का जो फ्रॉड जो है ये बहुत बड़े स्तर पे भारत में सबको बढ़ रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि जिन लोगों पे इलीगल जो पैसा है जिसको कहते हैं हवाला का, वो अपने पैसे को कन्वर्ट करने के लिए या बाहर निकालने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि दूसरों के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें किया ये जा रहा है कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, जो बिल्कुल पिछड़े एरिया में उनके कुछ लोग जाते हैं और वो लोगों को प्रलोभन देते हैं कि हम आपके एक निश्चित धनराशि जो कि इसका मैक्सिमम लिमिट 1,00,000 रुपए तक का है कि 50,000 रुपए हम आपके अकाउंट में डालेंगे, 5,000 रुपए आप रख लीजिएगा, ये ऐसी ऐसी स्कीम आई है, और 45,000 रुपए हम जिसको कहें उसको आप अपने मोबाइल के जरिए
4: आगे बढ़ा दीजिएगा।
5: हाँ, आगे बढ़ा दीजिए, किसी को ट्रांसफर करें जिस व्यक्ति को हम बताएं, ये किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि मेन जो गरीब तबका है वो इसमें फंस जा रहा है लालच में आके 5,000 रुपए की में,
4: भाई घर बैठे बैठे 5,000 रुपए मिलने तो बहुत बड़ी वो है।
5: जी सर, जी सर, वो यही हो रहा है। अब जब मैन जब फरगना पकड़ा जा रहा है, अभी रिसेंटली 2-3 ये हुए हैं, तो जब पुलिस ने वहां जाके जब देखा तो देखा कि सभी लोगों के अकाउंटों में उन्होंने पैसा भेजा और उनके जरिए उस पैसे को ट्रांसफर करवा दिया अन्य अकाउंटों में।
4: जी जी।
5: अब पुलिस ने वहां जाके छापा मारा तो बाकी काफी लोग तो घर छोड़ छोड़ के चले गए, बाकी की जो हम बेचारे गरीब हैं वो कोर्ट कचहरी में 1-1, 2-2 लाख रुपए सब खर्च हो गया।

0: 5000 रुपए के थोड़े से
1: मतलब परेशानी झेल रहे,
0: पूरी दिक्कत आ गई उनको,
1: समय जा रहा है उसमें,
0: तो मतलब इनडायरेक्टली वो आपके अकाउंट का इस्तेमाल अपने पैसे को कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं, मतलब एक तरीके किराए पे जिसे कहते हैं ना।
1: मतलब ये तो लोगों को पता ही हो गया कि जनधन योजना में बहुत सारे लोगों के खाते खुले हैं, ग्रामीण स्तर पे भी वो खाते खुले हैं, और ये मान के चले कि हर व्यक्ति या एक परिवार में एक खाता तो कम से कम आज है ही।
0: जी सर,
1: क्योंकि बहुत सारी डीबीटी की योजनाएं आ रही है, तो उन खातों का लेन देन के लिए कैश फ्लो तो होता नहीं है, तो भाई नंबर एक ऐसे कर ले, तो ये एक लोगों ने स्कीम बना ली है, स्कीम के नाम पे लोगों को एक तरह से धोखा दे रहे हैं। हाँ, ये आप कहना चाह रहे
0: हैं? हाँ, ये अपना मतलब अपना फर्जी पैसा कन्वर्ट करके करने के लिए उनके अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको बेचारों को इतना पता नहीं, वो 5 लाख के 10 हजार के लालच में आके अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं, जिससे वो जिसका वो बताते हैं उसको पैसा वो ट्रांसफर कर देते हैं।
1: इसमें अमित जी, उस गांव में जैसे आपने कहा कि मथुरा में भी ऐसे केस हुए हैं, 2-4 गांव ऐसे हैं, तो वहां पहले एक व्यक्ति फिजिकली पहुंचता होगा?
0: हाँ सर, पूरी टीम जाती है, 4-4 लोगों की। हाँ, जैसा जब
1: जैसे मतलब किसी स्कीम के प्रमोशन के लिए जाते हैं
0: वहाँ, और हमारे संज्ञान में यही आया कि जब वहाँ जाके उन्होंने पूरा गांव में जाके कहा कि ये स्कीम आया है। हाँ, इस तरीके से आपके अकाउंट पे हम एक निश्चित धनराशि भेजेंगे। हाँ, उसमें से इतनी धनराशि आपको रखना है। हाँ, और बाकी का पैसा जिसको हम बताएं उसको आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। और नॉर्मल सी बात है, 5000 रूपए अगर आप किसी को कहोगे, 10000 रूपए कहोगे,
1: और घर बैठे आ रहा
0: कहीं कुछ करना नहीं है, और मैक्सिमम धनराशि जो उसमें 1 लाख रूपये तक की है, वो ज्यादा अकाउंट में पैसा भी नहीं डालते, मतलब 1,50,000 वो उतना करते हैं, तो कन्वर्ट करने का मतलब ज्यादा पैसा नहीं डालते। वो कहते हैं मनी व्हील, शुद्ध हिंदी में जो मनी व्हील को कहा जाता है खच्चर भी दी, मतलब छोटे रूप में छोटे करके
1: आपके अकाउंट का एक तरह से इस्तेमाल कर लिया,
0: इस्तेमाल कर लिया,
1: 5 रुपए दे के किराया, 5000 दे के किराए पे ले लिया
0: किराया के तौर पे, अब वो उसका इस्तेमाल अपने पैसे को कन्वर्ट करने के लिए।
1: इस तरह से वो एक 4-5 लोगों की टीम बनाएंगे, आपके गांव में जाएंगे, कुछ बैनर कुछ स्टैंडी भी खड़ी करेंगे, तो इस तरह से एक माहौल बनाते होंगे वो।
0: माहौल नहीं, बैनर स्टैंडी कुछ नहीं लगाएंगे। हाँ, वो जाएंगे आप बैठेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि स्कीम भी ऐसी आई हुई है। हाँ, जिसमें आपके प्रॉफिट का हम ये बता रहे हैं। ठीक है ना,
1: और प्रॉफिट हो भी रहा है,
0: और प्रॉफिट हो जाए सीधा।
1: हाँ,
0: और फ्री में, मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। हाँ, आरबीआई भी कह रहा है, लेकिन लोग उसमें फंस जाते हैं।
1: सही बात है,
0: लेकिन पब्लिक इस चीज को समझ नहीं रही है, उसी का कारण है कि उसमें फंस जा रही है, और फिर बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं सर।
1: अब वो उस समय तो 5000 मिले, लेकिन बाद में 50000 खर्च भी हो गए। भाई लीगल कोई मामला, जब सिस्टम तो यही देखेगा ना कि आपने अपने अकाउंट दिया, उसका इस्तेमाल होने दिया, इसका मतलब आपकी रजामंदी थी, तो न चाहते हुए भी आप इस्तेमाल हो गए हैं, तो ये फिर जागरूकता बनती है कि अगर कोई ऐसा लेके आता है कि फ्री में कुछ दे रहा है तो सावधान हो जाइए भाई, कि यार ये इसमें तो कोई खतरा है।
0: खतरा है। हाँ। और सर इसमें देखिएगा, आपका रिश्तेदार भी कोई शामिल हो सकता है।
1: हाँ,
0: कोई चचेरा या कुछ, वो नॉर्मली आपने देखा कहते हैं कि फिर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, अपने अकाउंट में पैसा।
1: हाँ, तुम ले लो यार। हाँ, वहाँ भेज देना।
0: हाँ, ये होता है ना। हाँ, तो वहाँ भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कोई अगर ऐसा आपसे कहता है तो उससे कहें कि भैया दूसरा अकाउंट खोल लीजिए आप, उसमें पैसा ले लीजिएगा, अपने अकाउंट में किसी का अननेसेसरी पैसा आप लोग ना, छोटा मोटा धनराशि चल जाती है। हाँ, हाँ। लेकिन कोई बड़े अगर स्तर पे कोई पैसा अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा रहा है,
1: वैसे भी अगर आपके घर परिवार में संबंधों में दायरे में कहीं कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, आवश्यकता हो रही है, जहाँ लेन देन की आवश्यकता है, तो आपको भी पता रहता है। लेकिन हाँ, कोई अनावश्यक कह रहा है कि यार वो नहीं आ रहा, ये ले लो कर लो, तो फिर आप थोड़ा
0: सतर्क रहने की वहाँ जरूरत है।
1: वहाँ कई बार लगता तो यार मना कर दिया, लेकिन मना कर देना ठीक है,
0: बिल्कुल सही है सर। वहाँ थोड़े से आप कि अगर कोई बात होती है तो जब कोई कार्रवाई होगी तो ये देखा जाएगा ना किसके अकाउंट के जरिए लेन देन हुआ, वह ये नहीं देगा किसने मंगवाया।
1: सही बात है।
0: ये, हाँ,
1: अकाउंट कौन सा इस्तेमाल
0: हुआ, किसका हुआ, कि मेरा हुआ कि आपका हुआ, वो वहाँ ये देखा जाएगा। सामने वाला अपनी बात से पलट रहा है कि मेरा अकाउंट, मैंने तो पैसा मंगाया नहीं, फिर आप क्या करेंगे, कोई प्रूफ भी नहीं है आपके पास, प्रूफ ये हुआ कि आपके अकाउंट में गया पैसा। तो वहाँ सावधानी रखने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि इसमें ऐसे ही लोगों को शिकार बनाया जा रहा है और लोग फंस जा रहे हैं। और अब अभी आपने हाल फिलहाल देखा भी होगा कि बहुत बड़े स्तर पे ये हो रहा है कि बैंक अकाउंटों पे रोक लगा रही है, ट्रांजेक्शन पे देख रहे हैं आप, ब्लॉक कर देती है। जब तक आप साइबर थाने से एनओसी लाके नहीं देंगे तब तक आपके अकाउंट से होल्ड नहीं हटेगा। ये कारण ही यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि आपके अकाउंट में कोई संदेहपूर्ण कार्रवाई काम चल रहा है, तो बैंक
1: इस्तेमाल हुआ ये अकाउंट
0: हो रहा है। 1 रुपए अगर आने पे भी बैंक होल्ड लगा रहा है, वहां लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोई कहीं ना कहीं गलत जरिए से वो पैसा।
1: हाँ, वो सिस्टम ऐसा लग रहा है कि ये 1 रुपया भी कहीं से आया। हाँ, तो ये चेक कर रहा है कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: हाँ, अकाउंट, हाँ अकाउंट हो रहा है ना। हाँ, ये हाँ, हाँ, उसने गलत तरीके से भेजा। हाँ, तो मतलब ये अकाउंट कहीं ना कहीं हो रहा है। हाँ,

0: तो जब तक एनओसी आप ला के नहीं देंगे तब तक वो होल्ड बैंक नहीं हटा रही है। तो ये यही बताना है आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को कि इस चीज में थोड़ा सावधानी बरतें, किसी भी अनजान व्यक्ति का पैसा अपने अकाउंट में ना लें जिससे कि बाद में आपके
1: जी,
0: साथ परेशानी खड़ी
1: मतलब
0: हो।
1: आपका अकाउंट है वो आपके लिए है, आपके लेन देन के लिए, आप उसमें बचत करिए, आप उसमें लेन देन करिए, आप उसके को काम में लाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही पड़ा है तो फिर किसी को भी आप किराए पे दे दें कि भैया
0: जी
1: ले जाओ, चलो ये बाइक है इसमें पेट्रोल डलवा लो और इसको चला चलू के फिर ले आओ, ऐसा नहीं है कि आप अपने अकाउंट को कहीं इस्तेमाल ना होने दें, ये आप कहना
0: जी
1: चाह रहे
0: सर। और ये कुछ
1: हैं।
0: देखा भी होगा आपने, इसमें भी कुछ हो रहा है कि देखिएगा कि खाते का यूज किया और खाते में फर्जी करोड़ों रुपए के लेन देन कर दिए।
1: हाँ, आती है ऐसी
0: हाँ
1: खबरें
0: आती
1: आती
0: है ना,
1: कि
0: ये
1: अचानक
0: वही
1: से आ
0: है।
1: गया 2 करोड़ आ
0: हाँ
1: गया।
0: हमारे खाते का हमको पता ही नहीं है, हमारे आधार कार्ड पिन का सब कुछ ले लिया और
1: हाँ
0: हमारे खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन हो, ये भी अभी
1: हाँ
0: मैटर पकड़ में आया,
1: हाँ
0: समझ में
1: तो
0: आया।
1: ऐसे में जैसे बहुत सारी ऐसी खबरें आती कि उन्होंने तुरंत ये ईमानदारी दिखाई और सिस्टम को बताया कभी
0: जी
1: मेरे में लेन देन हुआ है, तो वहां फिर आप बच भी जाते हैं,
0: हाँ
1: कहीं पे
0: सर,
1: आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जागरूकता यहां भी जरूरी है
0: हाँ वो सर
1: कि लेन
0: अब
1: देन हो रहा है, कहीं ओटीपी आ रहा है, कहीं मैसेज आ रहा है, तो अगर आपने नहीं किया या आपकी बिना जानकारी के हुआ है तो तुरंत फिर बैंक को या सिस्टम को बताएं
0: हाँ
1: कि
0: सर
1: मेरे
0: बिल्कुल सही कह
1: उसमें।
0: रहे हैं आप। अगर आपके साथ कोई भी संदेहपूर्ण अगर आपके अकाउंट में कुछ हो रहा है तो तत्काल बैंक को जाके सूचित करें और एक जो साइबर थाना है वहां अपनी लिखित में दे दें कि ऐसे ऐसे हमारे अकाउंट में हमने लेन देन नहीं किया है और ये सस्पिशियस ये हुआ है, जिससे कि आप सुरक्षित हो
1: आप बचे,
0: जाएंगे
1: मतलब आपका फिर उसमें इंटेंशन हो
0: कि
1: जाएगा कि
0: हाँ
1: हाँ
0: कि
1: कि
0: आपने
1: भाई
0: गलत,
1: ये इन्वॉल्व
0: हाँ
1: नहीं है,
0: आप इन्वॉल्व नहीं है
1: भले
0: उसमें।
1: इस्तेमाल हो गया हो लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर वहां आप बच भी जाएंगे
0: जी
1: जो
0: जी सर बिल्कुल
1: उसमें।
0: यही है उसमें।
1: जी, तो कुछ और कहना चाह रहे हैं इसमें?
0: सर इसके अलावा सर हाँ एक जो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है CKYC,
1: जी,
0: नॉर्मल ये देखा जाता है कि बैंक में KYC के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाता है तो लोग बड़े अन्य वो फील करते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये दिक्कत आ रही है बार बार बैंक आधार कार्ड मांगता है या कोई भी डिपार्टमेंट मांगता है। तो अब भारत सरकार ने CKYC एक नंबर जारी कर दिया है, 14 नंबर का नंबर है ये, एक नंबर है मैं नंबर बता देता हूँ, 7799022129, 7799022129। इस नंबर पे आप मिस कॉल मार के आपके मोबाइल पे 14 नंबर का आपका CKYC नंबर आ जाएगा। जब
1: कॉल उस नंबर से मांग मारना है जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी सर हाँ, तो आप उससे मारेंगे तो वो नंबर आ जाएगा, जब भी बैंक आपसे KYC के आधार कार्ड पैन कार्ड मांगता है तो आप ये नंबर प्रोवाइड करा दें,
1: वो फिर वहां सेंटर
0: वो
1: से
0: सेंट्रल
1: जो
0: से वो डेटा उठा लेगा या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट भी वो डेटा वहां से उठा लेगा, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड बार बार ले जाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान KCC के लिए जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है कि बार बार बैंक KYC मांग रहा है, नॉर्मल बेचारे जो छोटे अकाउंट वाले हैं वो परेशान होते हैं, तो बड़ा सरल तरीका
1: तो ये तो
0: गवर्नमेंट ने।
1: घर से भी हो जाएगा, आपका रजिस्टर्ड जो नंबर है उससे कर
0: हाँ
1: सकते हैं
0: इसे आप
1: बैंक।
0: मिस कॉल मारे 14 नंबर का आ जाएगा, बैंक अगर कहता आप फोन करके कह दीजिए सर ये नंबर है मेरा,
1: हाँ,
0: बस बैंक को उसको
1: बैंक से समझता है,
0: हाँ
1: सेटिस्फाइड
0: बस
1: हो
0: वो कर
1: जाएगा।
0: देगा। और इसकी वेबसाइट भी है CKYCIndia.in, इस पोर्टल पे जाके भी आप अपना CKYC नंबर प्राप्त कर सकते हैं और ये आधार कार्ड की तरह एक कार्ड भी जारी होता है इसमें, अगर किसी को ज्यादा जरूरत है तो उस कार्ड को भी डाउनलोड कर
1: कर
0: सकते हैं
1: सकते
0: आप।
1: सर, तो ये एक अच्छी सुविधा है कि
0: ये तो
1: इसमें
0: सर
1: जरूर हर जगह आपको कागज नहीं ले जाना दिखाना नहीं है, एक नंबर ले लीजिए या एक कार्ड जनरेट करा
0: बहुत
1: लीजिए,
0: आसान है सर
1: और नहीं भी हो रहा तो बहुत सी जगह वो बने हुए हैं आप।
0: CSC,
1: हाँ, तो
0: हाँ
1: वहां से करा लीजिए आप
0: कहीं
1: टिकट।
0: से भी करा सकते हैं, अपने
1: हाँ
0: मोबाइल के जरिए भी ये करा सकते हैं।
1: जी जी
0: इससे ये कि आपको जो असुविधा होती है बार बार आधार कार्ड पैन कार्ड जमा करने की KYC फॉर्म भरने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। तो
1: जी
0: आकाशवाणी श्रोताओं को ये निवेदन है कि जो जो नंबर मैंने बताए हैं इस पे मिस कॉल मारकर अपना CKYC नंबर प्राप्त कर लें, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत वो आता है तो आप अपना ये नंबर उनको प्रोवाइड
1: जी
0: करा
1: जी
0: दें।
1: जी तो श्रोता बंधु, ये जानकारी थी एक तो मनी म्यूल के बारे में कि आप अपने खाते को इस्तेमाल न होने दें गलत काम के लिए, आपने खाता खुलवाया तो उसकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ खाता खुलवाने के लिए नहीं है, उसको इस्तेमाल करें लेकिन सावधानी से करें। और दूसरा CKYC की बात हमारे अमित जी कर रहे थे, तो एक जो नंबर बताया था उस पर आप एक मिस कॉल कर दें उससे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट से। मैं एक बार नंबर बता देता हूँ, 7799022129, इस पर मिस कॉल करेंगे तो एक 14 नंबर का आपको जनरेट हो जाएगा CKYC, उसको आप कहीं भी इस्तेमाल करके आपके आधार का और उसका जो इस्तेमाल होता है आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, इसी नंबर से सेंट्रल से डाटा उठा के चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो या आप DBT वाले जो बहुत सारे काम है वहां ये आपके काम आएगा। अमित जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने मनी म्यूल और CKYC के बारे में दी इसके

0: लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: आप अभी सुन रहे थे हिंदी वार्ता क्रम में ये वार्ता, जिसका विषय था मनीमूल एवं CKYC स्कीम के संदर्भ में।
2: आज सुनिए हाथरस और भदोही जिलों की हलचल।
3: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल, आलेख है संजय कुमार का।
4: भदोही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड के घटना के बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIOS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चक सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गांव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को अब इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहां प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए वन डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगरपालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष

0: ताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
1: भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनप्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड मुरसान ग्राम पंचायत रायक नगला लच्छी सैनपुर अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यहां अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अधीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना परियोजना पर लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोरा चौरा स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजना का अवलोकन पर एवं शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1,024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण पर किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मुड़ा वाली माता मंदिर दाऊजी महाराज मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसभा कार गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर सिद्धपीठ पर्वशाला तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर सड़क आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनीय स्थित नगर वन में संपन्न हुआ जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत जानकारी। विषय है मानव का पर्यावरण से संबंध और जानकारी दे रहे हैं घनश्याम वर्मा।

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, अनियमित सफाई व्यवस्था, जलमल निकासी की समस्या, खानपान की खाओ पियो तथा फेंको संस्कृति का प्रचलन, अपशिष्ट पदार्थों का निस्सरण, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कर्णभेदी कोलाहल तथा सघन बस्तियों ने हमारे शहरी पर्यावरण को पूर्णतया प्रदूषित कर दिया है। प्रदूषित वातावरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना और परिणामतः जनजीवन एवं मानव स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानव तथा पर्यावरण का सदैव से अटूट संबंध रहा है। पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त अमूल्य निधि है। इसका संरक्षण मानव जाति का परम दायित्व है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से दोहन प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है, जबकि इसके विपरीत आचरण से अर्थात कारखानों एवं वाहनों से निकलने वाला दमघोटू जहरीला धुआं, दैत्याकार मशीनों की दहाड़, वाहनों के हॉर्नों की चिल्लपों, ऊंचे ऊंचे मकानों एवं भवनों के कारण शुद्ध हवा तथा रोशनी की कमी, नालियों से बहकर अंततः समीपस्थ नदी तालाबों में मिलने वाला दूषित पानी, गंदी बस्तियों में जन सुविधाओं का अभाव होने से खुले स्थानों का उपयोग, प्लास्टिक की थैलियों तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का बेतहाशा प्रयोग, रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति, पार्कों तथा सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के अलावा जल संकट के कारण हरितिमा संवर्धन के प्रयासों को गहरा धक्का लगना स्वाभाविक ही है। पर्यावरणविदों द्वारा बताए गए चार प्रकार के प्रदूषण अर्थात जल, थल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण ने शहरी वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। शहरी क्षेत्रों में होने वाले प्रदूषण के प्रमुख कारणों में जनसंख्या में बेशुमार वृद्धि, औद्योगिक विकास तथा स्वचालित वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या का विशेष योगदान माना जाता है। जब किसी भी क्षेत्र में घनी आबादी का दबाव होगा और वनस्पतियों की कमी होगी तो हवा में प्राण वायु ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी तथा दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे वायु प्रदूषण होगा और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। जगह की तंगी के कारण बहुमंजिला इमारतों से शुद्ध हवा तथा धूप की रोशनी मिलने में रुकावट होगी। स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से हानिकारक गैसों का निस्सरण होगा, जिससे जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कारखानों तथा आबादी क्षेत्रों से निकलने वाले द्रव पदार्थों से जल प्रदूषण की समस्या होना भी स्वाभाविक ही है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमें इस प्रकार के प्रयत्न करने होंगे जिनसे हमारे शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखा जा सके। चतुर्विध प्रकार की प्रदूषण मुक्ति अथवा शहरी पर्यावरण संतुलन के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। जनसंख्या वृद्धि को संतुलित बनाने, वाहनों की संख्या तथा उनके उपयोग को कम करने, खराब वाहनों को हटाने, उनकी प्रदूषण जांच कराने, हॉर्नों का प्रयोग न्यूनतम करने, प्लास्टिक की थैलियों तथा उससे बने अन्य बर्तनों का प्रयोग बंद करने तथा पार्कों और सड़कों के किनारे प्रदूषण रोधी वृक्षों की प्रजातियां रोपित करने के सार्थक प्रयास जरूरी है। इनके अलावा भी शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था को भली प्रकार संचालित रखने, पानी के स्रोतों की समय समय पर जांच कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, पाइपलाइनों के लीकेज को अविलंब रोकने, राष्ट्रीय राजमार्गों को बाईपास देने, सरकारी भूमि पर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने, घरों में पौधारोपण की व्यवस्था, गंदी कच्ची बस्तियों एवं सघन क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों तथा कूड़ेदानों की समुचित उपलब्धता और उनकी नियमित सफाई तथा सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान देकर ही हम हमारे शहरों को काफी हद तक प्रदूषण मुक्त रखने में सफल सिद्ध हो सकेंगे।

0: आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत जानकारी घनश्याम वर्मा से। विषय था मानव का पर्यावरण से इस संबंध। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार।
0: संयोजक हैं OP सिंह।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल पेड़ लगाने का अभियान नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। जी हाँ, आज से वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत हो रही है। वन महोत्सव सप्ताह हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, वनों का संरक्षण करना तथा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। वे हमें शुद्ध वायु, वर्षा, औषधियाँ, फल, लकड़ी और अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कठिन हो जाएगी। और आज के बढ़ते हुए प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, ये हमें संदेश देती हैं कि अब समय केवल सोचने का नहीं है बल्कि काम करने का है। एक एक पौधा लगाकर और उसकी नियमित देखभाल करके हम पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वन महोत्सव 2026 की आधिकारिक थीम हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है, यानी कंजर्विंग द अर्थ थ्रू ग्रीन इनिशिएटिव्स। इसके साथ ही इसी साल देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को एक बड़े जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका ये उद्देश्य है कि लोगों को अपने क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल स्थानीय पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना, यानी आप जहाँ रहते हैं, जहाँ के वातावरण में जो पौधा लगाने के लिए अनुकूल हो, उस पौधों को लगाकर आप हरियाली को बढ़ाएं। केवल वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि पौधों को जीवित रखने और उन्हें बड़े होने तक उचित देखभाल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस महोत्सव के जरिए नागरिकों को अपनी धरती की रक्षा करने और दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। श्रोताओं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत जुलाई के माह में ही क्यों की जाती है, क्योंकि इस माह में मानसून आ जाते हैं और मौसम पेड़ पौधों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। इसलिए इस मौसम का विशेष रूप से लाभ उठाएं, क्योंकि अब मानसून आ रहे हैं, बारिश होगी और ऐसे में अगर आप कोई पौधा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके जीवित रहने की और उसके आगे वृद्धि करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आइए इस वन महोत्सव सप्ताह में हम भी ये संकल्प लें कि कम से कम एक पौधा हम अवश्य लगाएंगे, उसे पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करेंगे, साथ ही अपने परिवार, अपने मित्रों और आसपास के लोगों को भी इस अभियान से हम जोड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य हम बना सकते हैं। एक पेड़ 100 सुख के समान है, यानी हरियाली ही खुशहाली है। वन महोत्सव के अवसर पर हर जगह पौधारोपण की बात हो रही है, लोग उत्साह से पौधे लगा रहे हैं, लेकिन क्या केवल पौधा लगाना ही हमारा कर्तव्य पूरा कर देता है? नहीं, एक पौधा तभी वृक्ष बनेगा जब आप उसकी देखभाल करेंगे। लोग उत्साह में पौधे तो लगा रहे हैं, पौधे लगाते हुए फोटो भी खिंचवाते हैं, उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं, लेकिन यही हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। अगर हमारा पौधा जीवित नहीं रहे और आगे वो बड़े वृक्ष में नहीं बदले तो हमारा संकल्प अधूरा रह जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम उस तरह से जैसे हम किसी एक बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार अपने पौधे की भी देखभाल करें। सोचिए, किसान अगर बीज बोकर अपनी फसल की देखभाल ना करे तो क्या हमें एक अच्छी फसल मिल सकती है? नहीं। उसी प्रकार एक पौधे को भी नियमित पानी दिया जाए, उसमें खाद दी जाए, धूप, सुरक्षा और स्नेह दिया जाए, जिस तरह से एक बच्चे को हमारे स्नेह की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो हम पौधा लगाते हैं उसे भी हमारे प्यार, दुलार और स्नेह की ज़रूरत होती है। और जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमारा पौधा बड़े वृक्ष में नहीं बदलेगा। इसलिए केवल पौधा ही नहीं बल्कि उसे एक मजबूत वृक्ष

लक्ष्य बनाएं जब तक उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आज पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और घटते वन, ये पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इन समस्याओं का सबसे सरल और प्रभावी समाधान है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उन्हें जीवित रखना। इसलिए भाई आज हम ये संकल्प लेंगे कि मैं केवल पौधा नहीं लगाऊंगा बल्कि उसकी नियमित देखभाल करूंगा, उसे पानी दूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा और उसे वृक्ष बनने तक अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाऊंगा। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है। पौधा लगाना शुरुआत है, उसकी देखभाल ही सच्ची सफलता है। इसलिए आज वन महोत्सव पर हम ये संकल्प लें कि हम न केवल एक वृक्ष पौधा लगाएंगे बल्कि उसे एक बड़े वृक्ष में भी तब्दील करेंगे।

श्रोताओं, इस समय पूरे भारत में व्यापक स्तर पर पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, जिसकी शुरुआत 28 जून से हो चुकी है। हमारे जनपद मथुरा में इस अभियान को लेकर हमें जानकारी देते हुए आप हैं।

0: जनपद मथुरा के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रोहितास तेवतिया जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन।
0: इस विशेष पल्स पोलियो अभियान को लेकर आप क्या जानकारी हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? कितने चरणों में इस अभियान को चलाया जाएगा?
1: देखिए, ये पल्स पोलियो NID अभियान जून माह में चल रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में है, साथ ही हमारे प्रदेश और जनपद में भी अभियान दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार से शुरू हो चुका है, जिसमें दिनांक 28 जून को बूथ लगाए गए हैं। लगभग 1300 के से अधिक बूथ हमारे जनपद में लगाए गए, जिन पर की बच्चे आएंगे 0 से 5 वर्ष के बच्चे, और उनको 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिससे कि वो पोलियो की बीमारी से उनको बचे रहें। वो इसके पश्चात कुछ बच्चे अगर किसी कारण से बूथ पर नहीं आ पाते हैं तो 29 जून से और 3 जुलाई तक, सोमवार से शुक्रवार तक, घर घर एक्टिविटी होगी, जिसमें हाउस टू हाउस एक्टिविटी में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जमीन स्तर पर कार्यकर्ता हैं, जो FLW हैं, वो घर में जाएंगे और 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को दवा पिलाएंगे।
0: तो इसके लिए क्या आपने रूपरेखा तैयार की हुई है? किस तरह से आपकी टीम काम करेगी?
1: इसमें मैंने बताया, जैसे कि पहले दिवस में बूथ डे पर जो फिक्स्ड डे एक्टिविटी है, तो वहाँ मोबिलाइज होकर के बच्चे आते हैं, और फिर अगले 5 दिवस में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, माइक्रो प्लान के अनुसार 13 हमारे प्लानिंग यूनिट्स हैं, सभी प्लानिंग यूनिट्स में शहरी क्षेत्रों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों, माइक्रो प्लान के अनुसार उनका एक नियत दिवस में, जैसे सोमवार के दिवस में वो किन घरों में जाएंगे, फिर वही टीम मंगलवार के दिवस में किस घरों में जाएंगी, और किसी कारण से अगर कोई बच्चा सोमवार को नहीं दवा पी पाया था तो फिर मंगलवार को रिविजिट का भी प्रावधान रखेंगे, और इस तरह से 5 दिवस में वो घर घर एक्टिविटी करेंगे। यह बहुत आवश्यक इसलिए भी है, सभी जानते हैं कि हमारे देश से पोलियो खत्म हो चुका है। 27 मार्च 2014 में भारत को पोलियो फ्री का दर्जा प्राप्त हो चुका है, परंतु जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उनमें अभी भी पोलियो के केसेस पाए जा रहे हैं, वाइल्ड पोलियो वायरस के। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ 0 से 5 वर्ष के जनपद में जितने भी बच्चे हैं वो 2 बूंद पोलियो की दवा जरूर पी।
0: अगर हम अपने जनपद मथुरा की बात करें तो यहाँ क्या लक्ष्य मिला हुआ है?
1: देखिए, हमारे जनपद का लगभग 5 लाख बच्चों का लक्ष्य है, 4,98,815 बच्चों को हम जो एस्टिमेटेड टारगेट है हमारा वो है, और इसमें हमारे जनपद मथुरा के ही बच्चे नहीं, चूँकि मथुरा धार्मिक स्थली है, यहाँ श्रद्धालु और जो तीर्थात्री जो है आते रहते हैं, तो उनके साथ भी रेलवे स्टेशन पे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, मंदिर के पास में, बस स्टेशन, और जो हमारे HRG साइट्स हैं, जो हाई रिस्क एरियाज हैं, ईंट भट्टे वाली जगह हैं, नो बेड्स हैं, घुमंतु परिवार हैं, तो हमारे जनपद की ज्योग्राफी में भी जहाँ भी 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, सभी को जो हमारी बूथ डे और हाउस टू हाउस डे एक्टिविटी के दौरान के अतिरिक्त मोबाइल टीम्स भी हमने लगाई हैं, 50 से अधिक हमारी मोबाइल टीम्स भी काम कर रही हैं, और इन सभी बच्चों को पोलियो की दवा आच्छादित करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं।
0: जैसा कि कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स रहती हैं, ईंट के भट्टे हैं, इस तरह की जो जगह रहती हैं, जहाँ काफ़ी लंबे समय तक जो मजदूर हैं वो अपने परिवारों के साथ निवास करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है?
1: बिल्कुल, हमारे माइक्रो प्लान में जो HRG साइट्स हैं, हाई रिस्क ग्रुप साइट्स हैं, जैसे कि ईंट भट्टे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, घुमंतु परिवार हैं, विशेषकर इनके लिए भी माइक्रो प्लान में प्रावधान है, और वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता पहुँचकर उनके जो एलिजिबल बच्चे हैं 5 वर्ष तक के, उनको 2 बूंद पोलियो की दवा जरूर पिलाई जाएगी।
0: जैसा कि कुछ लोगों में पोलियो की दवा को लेकर भ्रांति रहती है, वो बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाते हैं, वो कहते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट होता है या इससे कुछ और हो जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, अब तो जन जागरूकता बहुत बढ़ी है, जनमानस में जागरूकता बढ़ी है। पूर्व में ऐसा था 10-15 वर्ष पहले कि जो थोड़ी भ्रांतियाँ रहती थी, फिर भी अगर किसी के उसमें मन में है कि इस तरह का, तो पोलियो की दवा बेहद सेफ दवा है, मुंह के रास्ते 2 बूंद दवा पिलाई जाती है, इसे बायोवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। 2 बूंद दवा जब आंत में जाती है तो ये अपना प्रभाव करती है, और फिर जो है जो पोलियो का वायरस होता है वो मुँह के रास्ते ही शरीर में प्रवेश करता है, जो है न्यूट्रलाइज करने में मदद भी करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी पैदाइश पे 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर, इसके पश्चात 1.5 वर्ष पे पोलियो की दवा पिलाई जाती है।
0: अगर कोई बच्चा जिसने हाल ही में जन्म लिया है तो क्या जन्म होते ही उसको पोलियो की दवा पिलाई जा सकती है?
1: बिल्कुल, ये आपका बहुत ही वाजिब और अच्छा प्रश्न है। मैंने जैसे ही बताया कि पूर्व में भी कि बच्चे की पैदाइश पर हम जो है पोलियो की 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाती है, जिसकी अवधि 15 दिन के अंदर पिला देनी चाहिए, जिसको 0 डोज कहते हैं, पोलियो की 0 डोज कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी ने रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी अभी उसको दवा पी है तो उसके अतिरिक्त दवा है, ये एडिशनल खुराक है, तो ये आवश्यक दवा है, ये भी उसको पिलाई जाएगी।
0: तो क्या इसका

0: विशेष समय अंतराल रहता है कि इतने इतने समय पर बच्चों को पोलियो की खुराक मिलनी चाहिए?
1: हाँ देखिए, पूर्व में जो है 8-10 वर्ष पहले जो साल में 11 राउंड्स होते थे हमारे, तो कई सारे बच्चे तो ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 5 वर्ष की अपनी उम्र तक कम से कम जो है 55 बार दवा पी ली हो। लेकिन अब तो रूटीन इम्यूनाइजेशन के अलावा साल में 1 राउंड आता है, तो एक तरह से ये होता है कि 5 मरतबा बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन में और कम से कम 4, 5, 6 मरतबा जो है उनको राउंड के दौरान दवा, तो 10 बारी दवा उनको मिल जाए। तो जितनी बार भी ये पल्स पोलियो अभियान चले उतनी ही बार दवा पिलाना आवश्यक है। पूर्व में ये दिसंबर माह में रहा था पिछले साल, तब भी उन्होंने 2 बूंद दवा पी होगी, जो अब उस वक्त 5 वर्ष से बड़े बच्चे हो गए होंगे उनको अब नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो 4 वर्ष के बच्चे होंगे दिसंबर में, जाहिर सी बात है अभी 5 वर्ष से छोटे ही हैं, तो उनको दवा पिलाई जाएगी। तो प्रत्येक उस बच्चे को जो 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग का है, उसको ये 2 बूंद की दवा इस सप्ताह के दौरान पिलाया जाना बेहद आवश्यक है।
0: ये तो बात रही पोलियो के टीकाकरण के बारे में, वैक्सीनाइजेशन के बारे में। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये पोलियो बीमारी है, ये क्या होती है और कैसे फैलती है ये?
1: जी देखिए, ये ओरोफिकल रूट से जो इसका वायरस आता है, और जब ये वायरस आता है तो ये न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नर्व्स में प्रॉब्लम आती है, और देखा है कि बच्चों में दिव्यांग जनता आ जाती है, और उससे क्या होता है कि मतलब में यूनिलैटरल ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो पैरों में दिक्कत या शरीर में किसी भी अंग में दिक्कत इस तरह से होती है, अक्सर बच्चों में दिव्यांग जनता आती है। जो पूर्व में हमारा पिछला केस जो रहा है हमारे यहाँ देश में, वो 13 जनवरी 2011 में हावड़ा में पाया गया था, तब से अब तक तो हमारे देश में ये अच्छा है कि कोई इस तरह के कोई केस नहीं निकले हैं। तो पोलियो बीमारी हमारे यहाँ समाप्त हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी देश में लगातार केसेस आ रहे हैं, और इसमें एक होता है कि हर्ड इम्यूनिटी बनी रहनी चाहिए, उसके लिए बेहद आवश्यक है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन के अलावा अभियान के दौरान भी 2 बूंद पोलियो की दवा जरूर 5 वर्ष तक के बच्चों को मिल जाए।
0: जो हमारे ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं तो वहाँ पोलियो के टीकाकरण के लिए कुछ विशेष तैयारी है?
1: देखिए, मैंने पूर्व में ही बताया कि माइक्रो प्लान के अनुसार हमारे जनपद के सभी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य योजना हमने बनाई गई है। उस कार्य योजना के अनुसार हम सभी घरों में जाएंगे, 4,80,000 घरों में जाएंगे, जहां हमको 4,98,000 लगभग 5 लाख बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा से आच्छादित भी करना है।
0: और सभी जो अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं आपके रेडियो के माध्यम से ब्रजधाम के सभी माता पिता, अभिभावकों, वृद्धजन, सिविल सोसाइटी से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि आपके घर में हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो उनको अपने 5 वर्ष के सभी बच्चों को दवा पिलवाएं, बेहद ही सेफ दवा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, और ये उन बच्चों को पोलियो जैसी एक जानलेवा बीमारी से, जिसमें मॉर्बिडिटी भी बहुत हाई रहती है, से निरंतर बचाव रखना बहुत जरूरी है, के लिए आवश्यक है, जरूर पिलवाएं। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रोहितास तेवतिया जी। और जैसा कि व्यापक स्तर पर पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है, तो पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान में सहभागिता कर उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें, ताकि वो पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रह सकें और हमेशा स्वस्थ रहें। तो डॉक्टर साहब, इस विशेष अभियान के बारे में हमारे श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन, आभार।

श्रोताओं, जब आज वन महोत्सव पर चर्चा हो रही है हमारे पर्यावरण के बारे में, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करें जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम कपड़े का थैला साथ लेकर नहीं जाते हैं। कहीं सब्जी खरीदते हैं, कहीं कपड़े खरीदते हैं, कहीं कुछ और सामान खरीदते हैं। तब हम दुकानदार से ये मांग करते हैं कि भैया एक पॉलीथीन दे दो। क्या आपने सोचा है कि पॉलीथीन का उपयोग जहाँ जितना सरल है लेकिन उसका निस्तारण उतना ही कठिन है। पॉलीथीन हमारी सुविधा तो बढ़ाती है लेकिन ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन पूरी तरह से नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लगाती है। इस दौरान मिट्टी की उर्वरता कम होती है, नालियां हमारी जाम हो जाती हैं और जल भराव जैसी समस्याएं इसकी वजह से पैदा होती हैं। जब ये नदियों और समुद्रों में पहुंचती है तो वहां रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी ये खतरा बन जाती है। इतना ही नहीं, कई बार जो हमारे आसपास के जो पशु होते हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं और जो अन्य पशु हैं, वो इसे भोजन समझकर खा जाते हैं और पॉलीथीन उनके पेट में पहुंच जाती है। इससे उनके स्वास्थ्य पर

गंभीर प्रभाव पड़ता है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम अपनी वही पुरानी आदत को अमल में लेकर आएं कि जब भी हम बाज़ार जाएं तो अपने साथ एक कपड़े का थैला अवश्य लेकर जाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण हरा भरा, साफ सुथरा और स्वच्छ बना रहे। इसलिए आज ये संकल्प लें कि हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और जब भी बाज़ार जाएंगे तो अपने साथ एक थैला लेकर जरूर जाएंगे।

0: और साथियों, इसी के साथ अब नज़र डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तो आज की खास खबरों में है कि ग्रीष्मावकाश के बाद आज से विद्यालय खुलेंगे और जिले के सभी 550 विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसके तहत शिक्षक अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। आगामी 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठने वाले शिक्षकों को विशेष अवकाश की स्वीकृति दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 1867 को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के तहत कनाडा को यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और आज ही के दिन सन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में नया नाम दिया गया था। और आज ही के दिन सन 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। और आज ही के दिन सन 1879 में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी। तो मित्रों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये पल है वही जिसमें है छुपी।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्यस्त दर्पण। प्रस्तुति जितेंद्र सिंह की थी।

0: Anh yêu chắc thế, ô bì xinh à.
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Book your tickets now, Noida International Airport, जहां सपने भरे उड़ान।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता साथियों, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में फिल्म तहलका का ये गीत। श्रोता साथियों, इस वक्त आप आनंद दे रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का।

श्रोता साथियों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मेरा साया का ये गीत। गीत को लिखा था गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। लीजिए आप सुनिए ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आनंद बख्शी के लिखे इन शब्दों को धुन से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज़ें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब की फिल्म थी महबूब की मेहंदी। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आरजू फिल्म के गीत को। लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आप अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गीत। गीत को लिखा था शायर जनाब मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। लीजिए, आप सुनिए।

वर्मा मलिक के लिखे इन बोलों को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। शब्द रचना माफ कीजिएगा, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म साजन की सहेली का ये गीत। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत उषा खन्ना का था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

एसएस बिहारी के लिखे इन बोलों को आवाज़ें दी थीं शब्बीर कुमार कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति की ने, और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से।

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना अभी फिल्म इजाजत का ये गीत। गुलजार के लिखे इस गीत को धुन से संवारा था आर डी वर्मन ने। आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत का अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्ड

0: रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी
2: सर, नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी, मेरा यही गया से आपसे बात कर रहा हूँ सर।
1: स्वागत है नेत्रपाल जी, आपके क्या हाल चाल है?
2: सर ठीक है, आराम। गर्मी तो बहुत पड़ रही है सर।
1: जी जी, गर्मी बहुत पड़ रही है और उमस भी है।
2: दोनों काम है सर, कूलर काम नहीं कर रहा है।
1: जी बिल्कुल, अब बारिश हो तब थोड़ा चैन मिले।
2: बात आप करवाओ थोड़ी सी, कहो प्रभुता परमी से आप।
1: जी जी, आप भी सहयोग कीजिए थोड़ा सा।
2: बिल्कुल पूरा सहयोग पूरा।
1: और घर में सब ठीक ठाक है नेत्रपाल जी?
2: हाँ सर सही है सर।
1: आज कौन सा गीत सुनेंगे?
2: मूवी है नीलकमल।
1: कौन सा गीत सुनवाए नीलकमल फिल्म से?
2: हे रोम रोम में बसने वाले राम।
1: लीजिए सुनवाते हैं ये भक्ति गीत। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद
2: सर। राधे राधे
1: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है।
1: और सर कुशल है?
0: सब बढ़िया है। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं सर बिरसोदा में गांव कुमार से भजनलाल बोल रहा था सर।
0: जी भजनलाल जी, क्या हाल चाल हैं?
1: ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आनंद आ रहे हैं समय तो।
0: और गांव में कैसे हैं सब?
1: हाँ गांव में सब ठीक है, अमन चैन है, सब कोई दिक्कत नहीं है सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो
1: गर्मी तो दिन में हो जाती है सर ज्यादा।
0: गर्मी तो काफी पड़ रही है
1: हाँ
0: जी, सावधान रहिएगा थोड़ा सा।
1: हाँ साहब, नहीं निकलते 11 बजे असल नहीं निकलते
0: जी
1: सर।
0: जी और ऐसे मौसम में अपने खान पान पर भी थोड़ा अंकुश रखना जरूरी है।
1: हाँ सब बिल्कुल, ज्यादा ओवर नहीं लेना, वही लिमिटेड का ही खाना खाते हो सर।
0: बताइए भजन लाल जी, आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शामिल करने के लिए सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: आदरणीय बिजली सर को मेरा प्रणाम।
0: नमस्कार।
1: काफी समय से बड़ा प्रयास कर रहा हूँ सर।
0: चलिए, आपने प्रयास किया, आपका प्रयास सफल हुआ।
1: और सर आप कैसे हो? हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हाँ सर, हम भी अच्छे हैं, बढ़िया है, भगवान की कृपा है।
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं सर आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस पार से।
0: जी यादराम जी, घर में सब ठीक हैं?
1: हाँ सर, आपकी दुआ है सर, अच्छे हैं सर।
0: और कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ साहब, खूब सुन रहे हैं सर, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है सर।
0: आज क्या फरमाइश रहेगी यादराम जी?
1: मन की आंखें।
0: जी कौन सा गीत सुनवाएं इस फिल्म का?
1: चला गया आजा रसिया, जाने वाले आजा तेरी याद सताए।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मेरा कॉल उठाने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से सर जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
1: स्वागत है मांगेलाल जी, बहुत दिनों के बाद आपने कॉल लगाया।
0: हाँ सर जी, ये बात आपने सही कहा।
1: कहीं व्यस्त थे?
0: और क्या, व्यस्त ही थे। मतलब कोई शादी मादी है, इधर उधर जाना आना, कोई कृषि का काम करना,
1: जी।
0: ऐसे व्यस्त थे सर जी।
1: खेतों में क्या हो रहा है आजकल?
0: आजकल खेतों में अभी 25-26 तारीख में मक्का लगा दी अपन ने।
1: अच्छा, बारिश हुई है आपके यहाँ?
0: हाँ, बारिश हो गई। 19 तारीख को बारिश हो गई थी, फिर 24 को बारिश हो गई, और कल भी बारिश भयंकर वही है सर जी।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज फरमाइश
0: हाँ
1: बता दीजिए, क्या सुनवाएं आपको?
0: सर जी, फिल्म का नाम रहेगा चित्रलेखा,
1: कौन सा गीत
0: और
1: सुनेंगे?
0: गाने के बोल रहेंगे, छा गए बादल नील गगन पे, भूल गया कजरा सांझ डाली। एक दो मित्रों को याद कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल
0: ब्रज रेडियो श्रोता मित्र महेंद्र सिंह चौधरी जी है मथुरा से, और मथुरा से ही है शारदा प्रसाद प्रजापति जी। इन दोनों को ये गाना चेत रहेगा सर।
1: सुनवाते हैं आप मित्रों की फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: जी भैया, योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़।
0: स्वागत है। योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं,
0: और परिवार में सब ठीक हैं?
1: एकदम बढ़िया है।
0: जी। और सामाजिक कार्य आपका कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया है भैया, वो तो अनवरत चलने वाली चीजें हैं।
0: जी। तो इसमें क्या-क्या करते हैं आप?
1: काम यही है भैया, सामाजिक रूप से साफ स्वच्छता का काम हो गया, जागरूकता का काम हो गया।
0: जी
1: जैसे कल ही पल्स पोलियो अभियान था हमारे यहाँ,
0: जी
1: तो बढ़ चढ़कर उसमें लोगों को जागरूक करना, ये सब चीजें हैं।
0: बहुत पुण्य का काम करते हैं आप।
1: जी जरूरी है भैया, ताकि सबको लाभ मिले और कोई भी इन जरूरत की चीजों से
0: वंचित ना रहे।
1: वंचित ना।
0: जी।
1: जी,
0: बताइए योगेश जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत आप हमें सुनवा देंगे। फिल्म है द ट्रेन और गीत के बोल हैं गुलाबी आंखें जो तेरी देखी
0: शराबी ये दिल हो
1: ये
0: गया।
1: दिल खो गया। जी
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी मथुरा,
0: स्वागत है आपका।
1: सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ अर्ज कर रहा हूँ सर जी। प्रणाम आपको।
0: बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं?
1: बस आपकी जब आवाज सुनते हैं आकाशवाणी मथुरा से तो अपने आप ही हमारे तो बस चेहरे पर रौनक आ जाती है और खिल जाता है चेहरा।
0: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं?
1: प्रोग्राम में आप इतनी मेहनत के साथ सजाते हो प्रोग्राम को श्रोताओं के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके दो शब्द आपके बारे में बोले। आपकी मेहनत को हम सलूट करते हैं।
0: जी, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है हमारे श्रोताओं की फरमाइशें पूरी होती हैं।
1: तो आज हमारे जितने आकाशवाणी मथुरा के साथ आपकी खूबसूरत आवाज के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को हमारा बहुत बहुत प्यार नमस्कार, और उन दोस्तों की नजर एक बहुत ही खूबसूरत गीत करवाना चाहते हैं सर जी।
0: जी बताएं।
1: नीला आकाश मोहम्मद रफी और आशा भोसले, गीत के बोल है तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है।
0: लीजिए सुनवाते हैं राम कुमार जी आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चंद्रा खत्री के साथ। मैं खुद हैरान हूं तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों है, मैं खुद हैरान हूं।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। रविंद्र जैन की शब्द रचना को अपनी आवाज़ दी लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर ने।

समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया नदीम शरण ने। फिल्म दीवाना से अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत। साथियों, आज 12 बजे से आप सुन सकेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। अपने मैसेज लिख भेजिएगा 9412255 पर। गीतों के साथ होगी थोड़ी सी बातचीत, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, तो थोड़ी सी दीजिएगा टिप्स छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों के साथ कैसा बिहेव करें।

चांदनी फिल्म से लिया ये गीत अभी आपने सुना विनोद राठौर आशा भोसले के युगल शुरू में। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत उदित नारायण की आवाज में फिल्म डर से।

ये गीत हमने लिया था फिल्म डर से। इस गीत को अपनी आवाज दी उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अभी आपने सुना फिल्म डर से।

अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के सुरों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चालबाज में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

आरंभ करते हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत बात और SMS कार्यक्रम के साथ। आज मैं हूँ चंद्रा खत्री। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, अच्छा ही होना चाहिए, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। साथियों, स्कूल ओपन हो चुके हैं, बच्चों को जितनी शैतानी करनी थी कर चुके हैं, मस्ती और क्लासेस ज्वाइन की होंगी। लेकिन छुट्टियों के बाद जब बच्चों को वापस स्कूल भेजना होता है तो वास्तव में यह एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि उनका जो रूटीन होता है ना पूरी तरह बदल जाता है। इसे आसान करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ दिन पहले, स्कूल खुलने से कुछ टाइम पहले, सबसे पहले नींद उसका समय धीरे धीरे ठीक करें, क्योंकि आप एकदम से बच्चों को उठाएंगे तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, वो उठ भी नहीं पाएगा। तो हफ्ता भर पहले आप बच्चे को प्रैक्टिस कराएं, धीरे धीरे सुबह सुबह धीरे से उठाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा जो है सुबह 9 बजे से पहले जागता ही नहीं है आजकल, जब छुट्टियाँ होती हैं तब। तो आप कोशिश कीजिए और अपने कार्यक्रम में इसी विषय पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू भी करेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा जिन श्रोताओं के हमारे पास संदेश आ चुके हैं उन संदेशों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।

संदेश लिख भेजा है महाराष्ट्र से सोपान तायडे वसंतराव भोजने पीएस नवाकर ने। कलानोर से लिख रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। इसी के साथ अगला संदेश जुड़ चुका है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी का। बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमसे जुड़ रहे हैं। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष। और रामगढ़ कैंट से हमारे साथ हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। अजमेर शरीफ से जुड़ रहे हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमान नाज, असद अरहम और समस्त हाशमी परिवार। शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में अपना संदेश भेजने के लिए। ताज मोहब्बद अंसारी, गुलाम साविर राही, महराज जहां, आप लक्सर हरिद्वार से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। जाफराबाद से हैं श्री सुधागर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी और हर्षदा, सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नांदूरा से हैं संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर फटक। और नासिक से हैं विशाल, सोनाली, समर्पण और भक्ति। स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सुनने के लिए। अहमदनगर से जुड़ रहे हैं जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर। महाराष्ट्र से नासिर, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के श्रोता गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और आयुषी। गांव चोहलदा बागपत से हैं संजय ढींगिया, नमन और अपार। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ के हैं अशोक, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम में। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश के हैं विजय, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी सलोनी, अनय, अनाया और पेंटर बाबू। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन एंड कृष्णा, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। मगरलोड छत्तीसगढ़ के हैं फनीश, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र और हेयांश। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर। और छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। महाराष्ट्र से हैं श्रीराम गोंदली, वैष्णवी, उषा गोंदली, युवराज गोंदली।

अगला संदेश हम तक पहुंचाया है नरेंद्र, ज्योति, आकांक्षा, आकाश ने, और राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से यह हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। आइए सुने आप सभी की पसंद का ये गीत।

जी हाँ साथियों, कार्यक्रम में आज हमने विषय शामिल किया है कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है तो उनको एक डर लगता है स्कूल जाने में, तो उनको कैसे हम समझाएं, किस तरीके से हम प्लानिंग करें कि बच्चा स्कूल अच्छे से चला जाए और खुश होकर जाए। तो इसी बीच एक संदेश भी पढ़ लेते हैं, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का कांकेर से हम तक पहुंचाया है संदेश इन्होंने, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के श्रोता हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नुखिल लाल वर्मा हमसे जुड़ चुके हैं, गंज डुंडवारा से हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान साथ ही जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बुंदेलखंड से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। जी हाँ साथियों, तो बात हम कर रहे थे कि बच्चा जब स्कूल जाने से डरता है तो पहले उसे बातचीत कीजिए। अगर बच्चा स्कूल जाने से मना करता है कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, तो उसका रीज़न पूछिए और उसे स्कूल के वो मज़ेदार दिन याद कराइए जब वो दोस्तों के साथ खेलते थे और शेयर करते थे, साथ में लंच करते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें आप उनकी लाइफ में शामिल कीजिए, बच्चों के साथ आप भी उनके दोस्त बन जाइए। तो छुट्टियों के बाद जो होता है ना, बच्चों को सच में स्कूल भेजने का जो काम है बड़ा ही धैर्य वाला काम होता है, तो आप यानी पेरेंट्स जब तक धैर्य नहीं बनाएंगे तो बच्चे तो वैसे ही बड़े लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। और यकीन जानिए छुट्टियां जब होती हैं ना तो उसके बाद स्कूल जाने में वाकई में बहुत बोरियत आने लगती है और लगता है क्या करेंगे स्कूल जाकर, और बच्चे छुट्टी ढूंढने का फिर बहाना ढूंढते हैं। तो छुट्टी ढूंढने का बहाना बिल्कुल नहीं देना है, बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्त जैसा बिहेव करना है। जुड़ चुके हैं कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और पुना वाले पुणे से अजय सोनवाने, करिश्मा, अविका, विशाखा, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आशा नारंग, सोनाली नारंग, सुरेश नारंग सहारनपुर से हम तक संदेश पहुंचा रहे हैं। हरजिंदर सिंह, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज और गुरनूर, शुभदीप, आप सभी हमसे जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। पंजाब से जुड़े हैं भाई धनोरी तेलीवाला से निजार, नौशाद, बेबी आलिया, आयन बाबू,

जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया सभी साथी हमसे जुड़ रहे हैं। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और साइना निवान। गुजरात से हैं अजीत, प्रमिला, भावेश और सनी। साथियों इतने सारे संदेश हम तक पहुंचते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत काफी लोगों को शामिल किया जाए। सैयद मजरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजियाफिया, इब्राहिम सद्दाम, आदिब, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कुरावली से जुड़ चुके हैं राशिद हुसैन, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अगला संदेश हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या और हेमलता डिंपल देवांगन का। छत्तीसगढ़ से ही बलकरण वर्मा, जनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला, आप सभी का शुक्रिया। प्रकाश रंभाड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल, आप सभी नागपुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या और भाई सुच्चा, विनोद पुरी, जायसवाल, आप सभी पंजाब से हमसे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तेलंगाना से मोहम्मद फजान, मोहम्मद फरहान, समायरा, आजमीन गुड़िया, आप सभी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, इसके लिए शुक्रिया। ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार, चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, आप सभी जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। संतोष, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, रूही, अन्नु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश और पूरा नामदेव परिवार, जब पूरा परिवार मिलकर हमारा कार्यक्रम सुन रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से हैं राजेंद्र, नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया, शुक्रिया आप सभी का शामिल होने के लिए। राजेश, सुरेखा, शुभम, अक्षय खंडवा से हमसे जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र से हैं माया, शिवांश, चंद्रकला, देवी दास। छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिहा, अनस और रेहान। संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, आप सभी लातूर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सुभाष, सुशील, डब्बू, बब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से जुड़ चुके हैं। मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रवि राज, गौरव कुमार एवं मित्रगण। छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु, आइए सुने आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस से जुड़ चुके हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, आप सबको भी मेरा नमस्कार। इसी के साथ अगला संदेश लिख भेजा है बुलंदशहर से, और एक बड़ी प्यारी सी बात लिख भेजी कि किसी भी खूबसूरत नगमे में शामिल करना, तो नगमा तो बिल्कुल अगला सुनाएंगे आपको, वो खूबसूरत है यानी जरूर लिखकर भेजिएगा। मोहम्मद सईद अब्बासी निगरत, परवीन अब्बासी, शानवाज सरफराज, फरदीन सुहान और रजान और अबान, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं बाबरी से खुदा बख्श खलीफा, हेमंत नामदेव, नंदनी, नेहा, निशा, छनुलाल श्रीवास एंड रज्जन साहू छत्तीसगढ़ के श्रोता, पांडो, चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक, प्रथमेश, संतोष एंड पांडुरंग कुंभार, आप सभी कुंभार गली कोलगांव से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से सदाशिव, कविता, श्रेया एंड भंडी, चंदोसी उत्तर प्रदेश से संजय, दीपक, आकाश, प्रमाण, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। अब्बास आलम, अमजद अली और लाडली बेबी निशा, सभी मित्रगण। वाराणसी से जुड़ चुके हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित और कोकोरानी, आप सभी का शुक्रिया। धोली प्याऊ से जुड़ रहे हैं उमा शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, निधि, मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल, जैद, मुनीरा एंड बाबूबाई खत्री, आप सभी डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है सुनकर साथियों, ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई चंडीगढ़ से, शेफाली, शेफी, डेविस, विमला, सतीश, अनेजा, शंकर लाल, जायसवाल, गणेश लाल, शुभ प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी, तृप्ति महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। राजनगर कांति निकेतन से लिख भेजा है, छुट्टियों के बाद बच्चों के साथ एकदम शालीनता भरे व्यवहार करने चाहिए। बिल्कुल सही बात, बच्चों के होमवर्क में भी सहयोग देना चाहिए, करेक्ट, दोस्ताना रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बच्चा छुट्टियों में, सच बात तो ये है कि लंबी छुट्टियों के बाद में ना बच्चे जो होते हैं वो भी थोड़ा सा लेज़ी तो हो ही जाते हैं, साथ में उनके पेरेंट्स भी थोड़ा सा ना ऐसे ही हो जाता है कि हाँ भेजेंगे बच्चों को, लेकिन नहीं, अलर्ट सबसे पहले पेरेंट्स को ही रहना पड़ता है। तो पेरेंट्स का ही ये फर्स्ट टास्क रहता है कि वो सुबह जल्दी उठें और बच्चों को भी उठाने की कोशिश करें। अच्छा होता क्या कि मॉर्निंग में उठते जूते कहाँ हैं, बैग कहाँ हैं, अब मेरी कौन सी कॉपी रखनी है, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करें, रात में ही सोने से पहले बच्चों की यूनिफॉर्म एंड शूज एंड स्कूल बैग्स सब तैयार रखें, जिससे कि आपको सुबह उठते ही प्रेशर नहीं रहेगा काम का, काम का प्रेशर आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट, सबसे महंगी बात ब्रेकफास्ट, भाई जो मम्मियां हैं सुन लें, ब्रेकफास्ट एक दिन पहले डिसाइड कर लें, बच्चे से पूछ लें बेटा कल ये लेकर जाओगे, बेटा कहेगा हाँ मम्मा ले जाऊंगा, तो बस फटाफट उसकी तैयारी करके रखिए और

नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ नहीं, केवल और केवल बच्चों के लिए लंच। तो जानकारी तो हम दे ही रहे थे, लेकिन इसके साथ जुड़े कौन कौन है देखिएगा। आप जुड़े हैं ऐश बाग लखनऊ से, रानी मुकेश गुप्ता, कुसुम, रश्मि, नीलम, रूपा एलादी और राजनगर कांति निकेतन, मधुबनी बिहार से कुशेश्वर, कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि एंड सिद्धि, कोमल गुप्ता। आपने भी बच्चों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे जो श्रोता है ना, सच में बड़े ही मन से कार्यक्रम सुनते हैं। और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर, इन्होंने लिख भेजा है कि चंद्रा दीदी बहुत ही सुंदर जानकारी बच्चों के लिए, बहुत धन्यवाद। आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और तहे दिल से सुन रहे हैं, सारे एक्शंस एंड रिएक्शंस भी आप लिखते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है और जानकर तो बेहद खुशी होती है कि हमारे साथी कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि अच्छी अच्छी जानकारी भी हमारे साथ साझा करते हैं। मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत एंड सुलोचना भगत हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, भोजराज खोरवाल, गीतिका एंड भानु प्रकाश। महाराष्ट्र से संतोष एंड विनोद हमारा कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अमित, शकुन, आरुषि, औशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि, धन्यवाद सभी श्रोताओं का जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए, कार्यक्रम में अपनी शिरकत करने के लिए। जामा मस्जिद रोड को गांवा से हाजी इसहाक लोलमानी, मोहम्मद उमर काजमी एंड हाजी अयूब शेरी, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।

दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश और मिला दीपक स्वाति जमशेदपुर के हैं विपिन स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार। आइए पहले आपको सुनवा देते हैं गीत।

अपने कार्यक्रम में आज का विषय हमने लिया था कि छुट्टियों के बाद बच्चों को जब स्कूल भेजना होता है तो क्या करें। बिल्कुल सही, काफी सारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी अपनी राय। बच्चों को ज्यादा टेंशन ना दें और उन्हें आराम से स्कूल पहुंचाएं। बच्चों को कुछ पहले प्यार करें, मित्रता का व्यवहार करें। बिल्कुल नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, राज बहादुर शाह, शंभू शाह, रजनी और सागर, आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं रंगोली राजनगर बिहार से। और आपकी जो बात है एकदम बिल्कुल सही आपने बोला है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बहुत ही सीधे साधे होते हैं, तो बच्चों के साथ में दोस्ताना व्यवहार करना जरूरी है। रामपट्टी से लिखा है कपिलेश्वर प्रसाद गुप्ता, क्रांति नाग, बोलिया गुप्ता और रजनी जी ने। बिल्कुल सही आप सभी लोगों ने सुझाव दिए हैं बच्चों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम श्रोता साथी सुन रहे होंगे वो इस पर जरूर अमल करेंगे। अब बबलू ठेकेदार, शेख वजीर, सोहेल शेख मोताला बाजार से हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम लाजवाब है, पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं मोहम्मद सुफियान सनावत से, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। साथियों सवा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस तारानी, नंदनी, अंजलि कृष्ण की नगरी मथुरा से जुड़ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार, प्रोफेसर वसुधा, वज्रसेन, आप सभी विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र से सोपान तायरे, वसंतराव भोजने और पीएस नहवाकर ने लिखा है कि विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं होती है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बल्कि बच्चे वहाँ अच्छे अनुशासन, संस्कार, ज्ञान, उज्जवल भविष्य की नींव है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। नियमित रूप से स्कूल जाने से नई नई बातें सीखते हैं, अच्छे मित्र बनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का उनको अवसर मिलता है। जो बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं वे पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर। इसलिए बहाने न बनाएं, समय पर तैयार होकर खुशी खुशी स्कूल जाएं और अपने शिक्षकों का सम्मान करें, मन लगाकर पढ़ें, हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें। आज की मेहनत ही कल की सफलता की आधार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी सीख देने के लिए। सही कहा बिल्कुल आपने। और एक बात मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगी कि स्कूल के माहौल में ढलने के लिए छुट्टियों के आखिरी दिनों में उन्हें कुछ देर तक पढ़ने का जो है टाइम दीजिए घर पर, है ना। उनको अपने साथ बिठाइए, कॉपी किताबों से उनको इंटरमिंगल कराइए और उसके बाद कभी कभी बच्चों को अपने दोस्त है ना उनसे भी थोड़ी थोड़ी बातें कराइए कि भाई अब हम लोग मिलने वाले हैं। तो क्या होगा ना, जब बच्चे आपस में बात करेंगे तो जरूर उनका जो मन होगा ना स्कूल जाने का करेगा। और देखिए स्कूल खुल चुके हैं, आज 1 जुलाई हो चुकी है, तो सभी से निवेदन है कि स्कूल में मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य है। इसी लाइन के साथ गीत बात और SMS कार्यक्रम को अब हमें यही विराम देती हूँ। नमस्कार।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दीक्षा गुप्ता के गायन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में, दीक्षा गुप्ता के गाए लोकगीतों का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं दीक्षा गुप्ता के गाए लोकगीतों का।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं. सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
2: आराम से मैडम.
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे दीक्षा गुप्ता के गाय लोकगीतों का। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।

0: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे भोलानाथ का बांसुरी वादन राग शंख ध्वनि में। किसान भाई और बहनों के लिए ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 6:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा के विषय रहेंगे वृक्षारोपण करें पर्यावरण बचाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसी के साथ होगी वार्ता। आज का विषय रहेगा कृषि प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व। जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक कुमार गर्ग। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 7:05 पर। बहनों के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोग दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगी रेशमा अग्रवाल। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा के विषय रहेंगे प्रकृति का श्रृंगार वृक्ष है एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। इसी के साथ सुनेगा काव्य पाठ हमारा पर्यावरण। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युवाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय लेकर आएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन पुण्यतिथि, डॉक्टर वीसी राय जयंती एवं पुण्यतिथि,

भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा संध्या 6:45। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम 8:30 पर आप सुनेंगे। चर्चा का विषय है 9:30 से यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन सकेंगे 2:30 से।

रात्रि 10 बजे समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

0: संवित शुरू में अभी आप सुन रहे थे देशगान।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

फूल खिले हों हर डाली और धरा पर हो हरियाली, यही है प्रकृति की सुंदरता जिनसे होती है खुशहाली, और इसी हरियाली खुशहाली के साथ हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को आपकी सखी आपकी सहेली रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों कैसी हैं आप, उम्मीद करते हैं अच्छी ही होंगी, और बहनों होना भी चाहिए क्योंकि हम माता बहनों पर ही पूरा घर परिवार टिका रहता है। तो जब हम स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे खुश होंगे तभी तो हम अपने घर की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। तो बहनों ये तो हमारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आज का कार्य।

कार्यक्रम आज की चर्चा के साथ। हवा की सरसराहट, चिड़िया की चहचहाट, समुद्र का शोर, जंगलों में नाचते मोर, इनका नहीं कोई मोल, क्योंकि प्रकृति है अनमोल। जी हाँ बहनों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रकृति हम सभी के लिए अनमोल है। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि प्रकृति हमारे लिए क्यों अनमोल है, क्योंकि प्रकृति से ही हम सभी को वायु, जल, लकड़ी यानी हमारी हर जरूरतों की पूर्ति होती है। तभी तो कहा जाता है कि प्रकृति देती जीवन दान, हम भी सभी करें इसका सम्मान। सम्मान करने का मतलब है कि प्रकृति को दूषित होने से बचाना। इसका दोहन जो आज के समय में हो रहा है बहनों, वह बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसके परिणाम भी हम सबके सामने वर्तमान में देखने को भी मिल रहे हैं। जैसे कि कहीं अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी का पड़ना, बेमौसम मानसून का आना, भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्याएं हम सभी झेल भी रहे हैं। बहनों, यह सब मानव की ही देन है। आधुनिकीकरण की दौड़ में भौतिकतावाद को अपनाकर मानव पर्यावरण को खुद से ही अपने हाथों से नुकसान पहुंचा रहा है। और आज भी हमें प्रकृति समय समय पर चेतावनी भी देती है कि प्रकृति कहना चाहती है हमसे, बचा है वक्त, संभल जाओ, अभी से बहुत हुआ दोहन और चली मनमर्जी, नहीं सुधरे तो फिर दिखेगी प्रकृति की शक्ति। इसीलिए बहनों, हम सभी को समय रहते इस ओर ध्यान देकर प्रकृति की रक्षा हेतु अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। और ये नहीं है कि पौधे लगाकर हमने छोड़ दिए और उसके बाद हमने उनको देखा नहीं, यानी कहने का मतलब है कि उनका संरक्षण भी हमें करना होगा। पेड़ पौधों की कटाई को रोकना होगा, हमें प्रकृति को और सुंदर बनाने में सहयोग करना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति को सुंदर बनाते हैं पेड़ पौधे, यानी ये वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। वृक्ष ही प्रकृति का असली श्रृंगार है। वृक्ष यानी पेड़ पौधे प्रकृति का श्रृंगार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे हमारी धरती को हरा भरा, सुंदर और जीवन योग्य बनाते हैं। जैसे आभूषण किसी व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही वृक्ष पृथ्वी पर हरियाली, रंग बिरंगे फूल और फलों के रूप में प्राकृतिक सुंदरता बिखेरते हैं। ये हमारे लिए शुद्ध हवा और जीवन का उपहार है। मौसम, जलवायु, बारिश इन पेड़ों की ही देन है। यह हमें प्राणवायु देने के साथ ही पर्यावरण में मौजूद तमाम जहरीली गैसों को ग्रहण कर हमें शुद्ध ऑक्सीजन की भी पूर्ति करते हैं। अगर बहनों सोचो, पेड़ न हो तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये धरती की असली संपत्ति है। वन हमारे पर्यावरण के रक्षक हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, बल्कि पेड़ पौधों का संरक्षण भी करना चाहिए। पेड़ पौधों का संरक्षण न केवल प्रकृति की रक्षा करता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करता है। पेड़ एक हॉस्पिटल की तरह है, पेड़ एक प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है, पेड़ एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, पेड़ नेचुरल ऑडिटोरियम का, एयर कंडीशनिंग हॉल का काम करता है। एक पेड़ हजारों मित्र जीवों को, पशु पक्षियों का पालन पोषण करके पर्यावरण की रक्षा करता है। इसीलिए हम सभी को पेड़ लगाने से लेकर उनके संरक्षण तक अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, तभी हम प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिवर्ष एक एक पेड़ लगाकर उनके संरक्षण का बीड़ा उठाना होगा, तभी हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे। प्रकृति का अध्ययन करें, प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति के करीब रहें, यह आपको कभी विफल नहीं होने देगी। और बहनों, अब आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया की ओर और सुनवाते हैं यह प्यारा सा गीत।

0: धरती और अंबर करे पुकार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार। जीवन का है ये आधार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार। जी हाँ बहनों, हमारा पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह आवरण है जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और रहते हैं। इसमें सभी जीवित और निर्जीव चीजें शामिल हैं। आज के समय में पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण जीवन का आधार है। यह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है, साथ ही सुरक्षित भविष्य है। जब बहनों बात हमारे पर्यावरण की हो रही है, तो क्यों ना इसी क्रम में आपको सुनवा दें एक काव्य पाठ जिसका विषय है हमारा पर्यावरण। प्रस्तुति है शालू अग्रवाल की।
1: हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। प्रकृति का कण कण हमें शिक्षित करता है, और उसी संबंध में कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं।

अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ हमारा पर्यावरण, जिसकी कवयित्री थी शालू अग्रवाल। बहनों, यह बात तो बिल्कुल सही है कि आज मानव जीवन खतरे में है, इसीलिए हम सबकी समझदारी इसी में है कि हम सभी आज से, बल्कि अभी से प्रण लें कि पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे, जिससे सभी पर्यावरण सुरक्षा कर पाएंगे। तो बहनों, अब आपको सुनवाते हैं यह प्यारा सा गीत।

बहनों, भारत सरकार ने देशवासियों के हित में बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिससे जरूरतमंद लोग पूरा पूरा लाभ ले सकें। लेकिन बहनों, जानकारी के अभाव में सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आज इसी क्रम में हम एक योजना की जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। बहनों, इस योजना का नाम है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जो बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि यह योजना 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और उनकी माताओं को भोजन और शिक्षा प्रदान करती है। एक लोकप्रिय और अग्रणी पहल है यह योजना। यह विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करती है। बहनों, यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू है और इसमें देश के सभी जिले शामिल है। आंगनवाड़ी

आंगनवाड़ी सेवाएं इस योजना का नया नाम है। यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए 6 सेवाएं देती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, तो बहनों आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला है इसमें पूरक पोषण। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को समुदाय में मान्यता दी जाती है और इसी सेवा के तहत उन्हें पूरक पोषण और विकास निगरानी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला है पूर्व विद्यालय गैर औपचारिक शिक्षा। इस खंड को योजना की रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है, यानी इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सेवा दी जाती है। इसके बाद है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। इस घटक के अंतर्गत 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाएं शामिल है। यह व्यवहार परिवर्तन संचार दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य महिलाओं की क्षमताओं को मजबूत करना, ताकि वे अपने स्वास्थ्य पोषण और विकास के साथ साथ अपने बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य पोषण और विकास का भी ध्यान रख सकें। टीकाकरण। जैसा कि बहनों आप सभी टीकाकरण के बारे में तो जानती ही हैं, यानी इसमें बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच, नियमित जांच भी की जाती है। और अंत में है रेफरल सेवाएं। नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि में रेफर किया जाता है। तो बहनों जिसको भी जरूरत है तो आप महिला एवं बाल विकास विभाग पर जाकर या अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और बहनों अब हमारी घड़ी लगातार इशारा कर रही है, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते कुछ चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं। वो हैं कुछ इस तरह, हमने तो सब कुछ ले लिया कुदरत से, अब वक्त है कुछ लौटाने का, पेड़ लगाने जल बचाने धरा को फिर से सजाने का। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कुमार सानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण के सुरों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म इश्क में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted doctors across the country on the occasion. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has also extended greetings to the medical fraternity for his unwavering dedication. In a video message, Mr. Nadda lauded doctors across the country for their exemplary professionalism and compassionate service to humanity.
1: On the occasion of Doctors' Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
0: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Q scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat G. Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्त

0: टीकाकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का

0: सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagement
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERTVCIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धर्मवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली।

0: बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
0: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसे

0: की धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है
0: जी।
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी
1: जी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात

0: से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
6: धन्यवाद मैम। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार।

0: या श्रृंखला, इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया।

0: हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे भाई ये भी
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा देखो भैया तुम भी तो

0: बोलो।
1: मैं बोलू? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
2: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है ना, मार मार करो।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
6: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि...
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
6: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
6: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
6: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकल कर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
6: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
6: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी, मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदलती है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। हाँ, अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं

मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर निकाल रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच गया। यहां तो इस तरह के कितने पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन न जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार. श्रोताओं, आज डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय यानी डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाई जाती है. ये दिन उनके महान चिकित्सा योगदान और दूरदृष्टि को याद करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में एक बंगाली परिवार में हुआ था. वे एक असाधारण चिकित्सक थे जो केवल मरीज की नब्ज यानी नाड़ी और चेहरा देखकर बीमारी भांप लेते थे. उन्होंने बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की थीं. डॉक्टर रॉय महात्मा गांधी के बहुत करीबी मित्र और उनके निजी चिकित्सक थे. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने गांधी जी का इलाज भी किया था. गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वे सक्रिय राजनीति में आए. 1948 से लेकर 1962 तक अपनी मृत्यु के समय तक वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता भी माना जाता है. उन्हें भारत में आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का जनक माना जाता है. उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई. उनके जन्मदिन 1 जुलाई को भारत के आधिकारिक तौर पर 1991 से चिकित्सक दिवस घोषित किया गया. चिकित्सा विज्ञान और जनसेवा क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था.

और युवा साथियों, अब हम बात करते हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की। उनकी पुण्यतिथि हर वर्ष 1 जुलाई को मनाई जाती है। उनका निधन 1962 को हुआ था। टंडन जी के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। उनका जन्म 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें राजश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे, संविधान सभा के सदस्य और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। राष्ट्र और भाषा की सेवा के लिए उन्हें वर्ष 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं युवा कथा कार्यक्रम में कहानी जिसका शीर्षक है भेदभाव। कथाकार हैं रचना चौहान।
4: जिया का हमारे जीवन में आना महज एक संयोग ही था। अचानक ही उन दिनों की यादें ताजा हो आईं। जूनी और जाहिद उन दिनों नए नए संपर्क में आए थे। जाहिद ट्रांसफर होकर अभय के ऑफिस में ही काम करने आया था। दोनों के एक ही डिपार्टमेंट में कार्यरत होने के कारण दोनों निरंतर एक दूसरे के संपर्क में ही रहते थे। अभय यद्यपि जाहिद के सीनियर थे, पर उन दोनों की रुचियां, शौक समान होने के कारण दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। इसीलिए अब जाहिद अपने रहने के लिए घर तलाश रहा था, तो अभय ने कोशिश कर हमारे सामने वाले खाली फ्लैट को किराए पर दिलवा दिया था। जूनी और जाहिद दोनों ही बहुत हसमुख और जिंदा दिल इंसान थे। हमारे फ्लैट आमने सामने होने के कारण जूनी और जाहिद से हमारी अच्छी पढ़ने लगी थी। जूनी मुझसे 4-5 साल छोटी होने के कारण मुझे हमेशा दीदी कहकर ही बुलाती थी। जूनी और जाहिद की शादी हुए 1.5 साल ही हुआ होगा। जूनी और जाहिद ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। उन्होंने अपने अभिभावकों को मनाने का बहुत प्रयास किया, पर वे किसी भी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं थे। अंत उन दोनों को घर वालों से संबंध विच्छेद कर अलग रहना पड़ा। कुछ समय बाद जूनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम जिया रखा गया। जिया के जन्म के बाद तो हमारी घनिष्ठता इतनी बढ़ गई थी कि हम चारों एक परिवार के रूप में ही हो गए थे। जूनी रोज ही नन्ही जिया को मेरे पास लेकर आ जाती। जिया के साथ खेलते खेलते मेरा समय कैसे कट जाता मुझे पता ही नहीं चलता। जूनी मेरी भावनाओं का इतना ख्याल रखती थी। जिया के माध्यम से मुझे मातृत्व सुख देने का उसका प्रयास मुझे अंदर तक छू जाता था। अभय और जाहिद भी हमारी निकटता को देखकर बहुत खुश थे, पर हमारी खुशियों को नजर लग गई। आज भी वह दिन याद करती हूँ तो शरीर में लहरें सी दौड़ जाती हैं। उस दिन जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई की खबर आई तो जूनी और मैं हमारे घर पर ही बैठे साथ साथ चाय पी रहे थे। जिया हमारे साथ ही पलंग पर थी। कुछ ही मिनटों में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई का समाचार आग की लपटों की तरह सर्वत्र फैल गया। सारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार तत्काल बंद होने लगे थे। कारण सब जगह खौफ और तनाव का वातावरण था। किसी भी समय कोई अनहोनी घटित होने की आशंका से लोग जल्दी अपने घरों में पहुंचना चाहते थे। जाहिद और अभय भी तुरंत ही घर लौट आए थे। जाहिद ने आते ही दंगे होने की आशंका से जूनी को सचेत करते हुए बाजार से 7-8 दिन का राशन आदि आवश्यक वस्तुएं स्टोर करने की सलाह दी। जूनी और जाहिद अपने घर की चाबियां, जिया के दूध की बोतल हमें पकड़ाते हुए आधे घंटे में शीघ्र ही लौटने को कह गए थे।

उस समय हमारे इलाके में विशेष तनाव नहीं था। अभी चूनी और जाहिद को गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि हमारी गली में भी अचानक लड़ाई झगड़े और बमों के धमाकों की आवाज़ सुनकर हम बेहद घबरा गए थे। अपनी बालकनी से नीचे झांका तो देखा लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। हमारी गली के नुक्कड़ पर कुछ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच छिड़ी बहस ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था और खून खराबे की नौबत आ गई थी। जिया और जाहिद को गए 4 घंटे हो गए थे, पर उनकी कोई खबर ना होने के कारण हमें घबराहट होने लगी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनका पता लगाएं। हमारी आंखों के सामने हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे होकर सांप्रदायिक लड़ाई लड़ रहे थे। इस वातावरण में पुलिस भी बीच बचाव करने में असफल हो रही थी। भूले भटके कोई स्कूटर की आवाज आती तो हम इस आशा में दौड़कर अपनी खिड़की में झांकते कि शायद इस बार वे लौट आए हों, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। उनका इंतजार करते करते शाम हो चली थी, पर उनकी कोई खबर नहीं थी। अभय ने उनके एक दो मित्रों को फोन किए कि दंगों की वजह से शायद वे घर ना लौटकर उनके पास चले गए हों, पर कोई लाभ नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमारे एरिया में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इस सब घटना क्रम से अनजान नन्नी जिया अपनी ही दुनिया में बेखबर थी। बीच बीच में जब भी वह रोती या नींद से उठती तो मैं उसकी दूध पिलाकर वापस सुला देती। 3-4 दिनों बाद जब स्थिति कुछ सामान्य हुई तो उन लोगों की गुमशुदगी की सूचना देने के लिए अभय नज़दीक के थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए। जूनी और जाहिद की फ़ोटो हमारे एल्बम में मिल जाने से हमारी रिपोर्ट कराने के अगले दिन थाने से फ़ोन आया कि जूनी से मिलती जुलती शक्ल की युवती को सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल अवस्था में भर्ती करवाया गया है। हम तुरंत जिया को लेकर अस्पताल भागे। इमरजेंसी वार्ड में एक बेड पर हमें जूनी नजर आई। उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। उसने हमें पहचान लिया था। हमें देखते ही वह जोर जोर से फूट कर रो पड़ी। मैंने जिया को उसकी बाहों में देना चाहा, पर हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण वह अपने हाथ नहीं उठा पाई। मैंने उसके पास जिया को लिटाकर उसके सर पर हाथ फेर कर उसे धीरज बंधाना चाहा। जूनी एक टक जिया को देखे जा रही थी। लग रहा था वह जिया को कसकर अपनी बाहों में लेना चाह रही थी, पर अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण लाचार थी। कुछ देर बाद जब जी भरकर रोने के बाद वह कुछ सामान्य हुई तो उसने टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ बताया उसका सारांश यही था कि जाहिद और वह सारी खरीदारी करके लौट कर जैसे ही गली के चौराहे पर पहुंचे कि अचानक भीड़ के एक रेले ने देखते ही मारो इन मुसलमानों को कहते हुए उसे स्कूटर से खींचकर नीचे गिरा दिया और बड़ी बेरहमी से उसको मारने लगे। जाहिद ने बहुत मिन्नतें की कि वह बेकसूर है, उस पर रहम करें, पर सांप्रदायिक से ग्रसित आदमी का विवेक कब कायम रहता है। लोगों ने उनकी बातें सुने बिना उनको लाठियों और चाकू छुरे के बारों से लहूलुहान कर दिया था और जूनी ने उसे बचाने का प्रयास किया तो बेकाबू भीड़ ने उसे भी नहीं बख्शा। उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गई और जब होश आया तो स्वयं को अस्पताल में पाया। जूनी बार बार जाहिद के विषय में पूछ रही थी। अभय ने उसे शीघ्र ही जाहिद की खोज खबर लाने का विश्वास दिलाया और इसी बीच नर्स ने पेन किलर और नींद का इंजेक्शन देकर जूनी को सुला दिया। जूनी की आंखें लग जाने के बाद हमारा वहां ठहरना बेकार था। यही सोचकर अभय मुझे और जिया को घर छोड़कर जाहिद का पता लगाने एक बार फिर से थाने चले गए थे। रात को अभय काफी देर से घर लौटे और उन्होंने बताया जाहिद हमें छोड़कर सदा के लिए चला गया था। अभय ने बताया कि सरकारी अस्पताल के लावारिस शवों में जाहिद की लाश भी थी। 2-3 दिन बीत जाने के कारण जाहिद की लाश बिगड़ने लगी थी। उसका जल्दी दाह संस्कार करना जरूरी था। अंत अभय को किसी तरह अपने 4-5 सहयोगियों को लेकर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। दूसरे दिन सुबह जिया को लेकर फिर अस्पताल पहुंचे तो जूनी की स्थिति गंभीर

बनी हुई थी। हमें देखते ही उसने जाहिद के विषय में पूछा। अभय ने उसे झूठा दिलासा दिया, पर उनके चेहरे पर छाई उदासी देखकर जूनी सब कुछ समझ गई थी। जूनी को शाहिद की मौत का गहरा सदमा लगा था। वह बार बार एक ही बात पूछ रही थी, दीदी हमें किस बात की सजा मिली है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया गया? हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। जूनी के पास से मिलने के समय तक रहने के बाद हम घर लौट आए थे। उस दिन अस्पताल से रात के 8 बजे फोन आया कि शायद जूनी का आखिरी समय आ गया था। वह बार बार हमें याद कर रही थी। हम जिया को लेकर उसी क्षण अस्पताल भागे तो देखा जूनी शायद हमारा ही इंतजार कर रही थी। जिया को अपने सीने से लगाकर कुछ देर बाद वह बहुत मुश्किल से बोल पाई, दीदी मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं भी जाहिद के पास जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद जिया का आपके सिवाय और कोई नहीं है। मुझे लगता है कि प्रति ने शायद हमें इसीलिए मिलाया था कि मैं जिया को आपको सौंप सकूं। आप मुझसे वादा करें कि जिया को आप कभी नहीं बताएंगे कि हमारी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। कुछ पल बाद वह फिर बोली, दीदी एक और कुछ हिंदुओं ने हमारी जान ली तो दूसरी ओर आप जैसे उदार भी हैं जिनके भरोसे मैं अपनी अंतिम निशानी छोड़कर इस विश्वास के साथ जा रही हूँ कि आप लोग हमसे भी ज्यादा उसको प्यार दुलार देंगे। हमने जिया की ओर से जब उसे पूरी तरह आश्वस्त कर दिया तो उसके चेहरे पर गहरी शांति छा गई थी। लग रहा था जिया को सौंपने के लिए ही उसके प्राण अटके थे। अपनी बात कहने के 7-8 मिनट बाद उसने गहरी लंबी सांस ली और चिर निंद्रा में सो गई। जूनी और जाहिद की मौत के बाद उनकी अंतिम इच्छा अनुसार हमने जिया को कानूनी तौर पर गोद ले लिया था। अभय का ट्रांसफर होने के कारण हम बंबई चले गए थे। तब से लेकर अभय और मेरे अलावा जिया की असलियत के विषय में किसी को भी जानकारी नहीं थी। उम्र बढ़ने के साथ जिया की प्रगति भी संतोषजनक थी। अपनी विलक्षण प्रतिभा से स्कूल और कॉलेज में भी उसने हमारा बहुत नाम रोशन किया। आज जिया वकील है। इतने दिनों से हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जिया ने अपने सहकर्मी जितेंद्र के साथ विवाह करने की जब से इजाजत मांगी है मन को कितनी ही बातें उद्वेलित करने लगी हैं। हाल की जिया ने इस संबंध के लिए हमारी स्वीकृति चाहने की औपचारिकता जरूर निभाई है, परंतु जिस लहजे से वह बात कर रही थी हमारे हाँ या ना की उसके लिए खास अहमियत नहीं है। उसने कहा, डैडी मम्मी 2-3 दिनों में आप भी मुझे अपना फैसला बता दें। मैं जानती हूँ जितेंद्र दूसरी जाति का है, पर हमने विवाह करने का फैसला कर लिया है। जितेंद्र भी अपने माता पिता से हमारी शादी की बात करने गए हैं और कल तक लौट आएंगे। जिया की यह बात सुनकर मैं रात भर नहीं सो पाई। मैंने और अभय ने जिया को सब कुछ बताने का फैसला किया, जबकि हमें पता था कि यह बात बताने से शायद जिया हमसे दूर हो जाए, पर हम अपने स्वार्थ के लिए उसके जीवन में आड़े क्यों आए। सुबह जब जिया नाश्ते की टेबल पर आई तो बहुत उदास लग रही थी। अभय ने जिया से कहा, तुम्हारे और जितेंद्र के विवाह से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अभय पूरी बात कर पाते उससे पूर्व ही जिया बोल पड़ी, डैडी मुझे मालूम है कि जितेंद्र के पंजाबी होने के कारण आप भी इस संबंध के पक्ष में नहीं हैं। पर अभय ने जिया से कहा, बेटी तुम गलत सोच रही हो, हमें तुम्हारे अंतर जातीय विवाह करने से कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें आज इस विषय में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। अभय की बात सुनकर जिया आश्चर्यचकित रह गई। अभय ने जब विस्तार से उसके अतीत के विषय में बताया तो वह कुछ क्षण तक स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उस दिन वह पूरे दिन कमरे में ही बंद रही। इस घटना के 3-4 दिन बाद एक दिन शाम को अभय और मैं लॉन में चाय पी रहे थे, तभी जिया जितेंद्र को लेकर हमारे पास आई और कहा, पापा यह जितेंद्र है, जितेंद्र ने हमें अभिवादन किया। तो अभय ने पास रखी चेयर पर उसे बैठने के लिए कहा।

बीच जिया और जितेंद्र के लिए चाय नाश्ता भी मंगवा लिया था। दो चार मिनट की औपचारिक बातचीत के बाद जितेंद्र बोला, अंकल आंटी, जिया ने अपने अतीत के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, तभी से मैं आपसे मिलना चाहता था। पिछले 3-4 दिनों से जिया बहुत अपसेट है, मैंने इसको इतना समझाया तब जाकर यह सामान्य हुई है। अंकल जिया को अपने अतीत के विषय में जानकर

0: जब इससे हुआ तो उसे अपनी गलती का बोध हुआ। हम सब जितेंद्र की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जितेंद्र ने कहा, इसका अतीत जानने के बाद उनमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। हो सकता है माता पिता के रवैये में इस सच्चाई को जानकर फर्क पड़े, पर हमने तय किया है कि हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। यदि मेरे अभिभावक मेरे फैसले से सहमत होंगे तो बहुत खुशी की बात है, अन्यथा हम आपका आशीर्वाद लेकर कोर्ट मैरिज करेंगे। मैं आपको यही विश्वास दिलाने आया हूँ कि जिया आपकी ही बेटी थी और आपकी ही बेटी है। मजहब और धर्म की कोई दीवार हमारे रिश्ते की बीच नहीं आएगी। जितेन कितना समझदार और संवेदनशील लड़का था, आज जितेन ने हमारी मन की आंखें खोल दी हैं। मैंने जिया को कस के अपनी बाहों में ले लिया था।
1: अभी आपने सुनी ये सुरचित कहानी भेदभाव। कथाकार थी रचना चौहान और श्रोताओं कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोता, उसी के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को

कार्यक्रम विवरण आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद संध्या 6:15 पर होगा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इसमें चर्चा होगी वृक्षारोपण करें पर्यावरण बचाएं। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक और चर्चा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता कृषि प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। साथ ही हमारे श्रोतानंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम में ब्रज लोक गीतों का।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे जगदीश प्रसाद।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक। रात 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। रात 10 बजे से लेकर रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग शंख ध्वनि में बांसुरी वादन। वादक कलाकार होंगे भोलानाथ। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे तोताराम शर्मा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे बिरजू महाराज का ख्याल गायन राग ललिता गौरी में। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

अभी आप देशगान सुन रहे थे FM 102.2 MHz पर, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

प्रेस ग्रामीण कार्यक्रम सुनने बारे सभी भैया बहनान को मृणालिनी बहन की राम राम। भैया आज हम चर्चा करें वृक्षारोपण करें और पर्यावरण बचाएं। ये तो हमारे ग्रामीण अंचल के भैयान को तो बहुत ही अच्छे तनिया से बनो पता भी होगा कि भैया पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभकारी हुए हैं। अब तो कहो जाए ना कि भाई इतने पेड़ कट गए हैं तो शहरन में बड़ी घुटन होए, गर्मी होए, बहुत सांस लेने में परेशानी होए, लेकिन हर बार आदमी ने सोचा कि भाई 2 दिन आगे अगर छुट्टी भी मिल जाए ना तो यूँ लगे भैया चलो कहूँ ऐसे गाँव माऊँ चलो हरियाली चलो देख हरियाली हुए बढ़िया हुए। भैया हरियाली तो होएगी अगर हम पेड़ लगाएंगे, अगर पर्यावरण बचाएंगे शुद्ध रखेंगे तो हरियाली बहुत होगी। प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, पॉलीथिन का प्रयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जितनी ज़्यादा है सकें उतनी हरियाली हम आसपास लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। इनसे हमें ऑक्सीजन मिले, बहुत लाभ मिलता है। हमारे ग्रामीण अंचल के भैया बहन जितने स्वस्थ रहे में, जितने अपने आप को स्वस्थ महसूस भी करे हैं, उतने हमारे शहर में देखने को ना मिले। शहर में सबसे ज़्यादा परेशानी जाओ, अरे भैया थोड़े दिन पीछे बालकन को बहुत ज़्यादा परेशानी है रही है, अरे छोटे छोटे बच्चन को भी चश्मा लग जावे चूँकि उन्हें हरियाली ना मिले, शुद्ध हवा ना मिले, शुद्ध वायु जब ना मिले तो कहो जाए ना शरीर अस्वस्थ है जावे। तो अधिक से अधिक कोशिश ये करना चाहिए भैया कि जितनों है सके उतने पेड़ लगाएं और पर्यावरण को जितनों बचाएं। हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम जीवन में कार्य भी अच्छे कर सकेंगे और अपने बालकन को भी आगे स्वस्थ रख सकेंगे। तो पूरी तरह से जा बात का ध्यान रखते हुए कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं, वृक्षारोपण करना है। अब तो इस तरह को एक नियम सा बन गया है कि भाई गामन में तो चलो बहुत हरियाली है अभी भी, जगह जगह गांव में हमारे घर के गांव में कच्चे मकान के आसपास भी पेड़ पौधे लगा दे मैं, बहुत सी जगह शहर में भी शौकीन हुए हैं लोग, बाग क्या बालकनी है वहाँ मैं गमला लगा दिए हरियाली बनी रहे, बहुत अच्छा है। जितने पेड़ पौधे लगाएं, बालगन को जन्मदिन हुए तो भैया पेड़ लगा लो इनके नाम पे। और पहले ऐसा होता कि देखो जी बड़े बूढ़े पेड़ लगा गए, आज भी इनकी छाया हमें मिल रही है और हम बहुत ही आनंद से रह रहे हैं। तो इस तरह का ध्यान रखें, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें और पर्यावरण को शुद्ध रखें। ये तो रही भैया आज की चर्चा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको आनंद दबाएंगे बनवारी लाल साथी के स्वर में जालो गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे बनवारी लाल और साथी में जा लोक गीत को राधे राधे गाऊं गलियन में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको जानकारी दे पाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा थे कृषि प्रद

0: प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व।
1: किसान भाइयों, कृषि संचार प्रौद्योगिकी अथवा कृषि सूचना तकनीक का कृषि से सीधा तालमेल है। अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि कृषि सूचना तकनीक का कृषि उत्पादन में क्या महत्व है। हमारे कृषि वैज्ञानिक कई वर्षों से दिन रात प्रयोगशालाओं व अनुसंधान कार्यशालाओं में कृषि की उन्नत विधियों, अच्छी किस्म की प्रजातियों, कीटों एवं रोगों के नियंत्रण की विधियों आदि का विकास करते आ रहे हैं। इस विकास का महत्व तभी है जब ये विकसित तकनीकें हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे और किसान इन्हें अपने खेतों में अपनाकर कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकें। भारत में किसान समुदाय की विषमता और अलग अलग फसलों की पैदावार भी दो अहम वजह हैं जिसकी वजह से किसानों तक खेती से जुड़ी जानकारी पहुँचाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। आज के समय में किसान को दो चीज़ों की जरूरत है, पूंजी और तकनीक की। किसान समय के मुताबिक खेती करें तभी किसानों का विकास संभव है। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि संचार प्रौद्योगिकी आज के समय में ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से कृषि की तकनीकी ज्ञान एवं सूचना को प्रभावी तरीके एवं त्वरित गति से किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। कृषि की सूचना तकनीक हमारे किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी सुलभ करवाती है। इस तकनीकी जानकारी के प्रति किसानों में विश्वास पैदा करती है। किसानों के लिए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यदि इन कृषि विधियों को अपनाते समय उनके सामने कोई समस्या आती है तो उनका भी समाधान किया जाए, जिससे किसान अपनी खेती में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके समय पर जानकारी प्राप्त करके कीटों रोगों का नियंत्रण करके उत्पादन को बढ़ा सकता है। आजकल देखने में आ रहा है कि दशकों से परंपरागत तरीके से खेती से जुड़े कई किसान भी इन दिनों नित नए तकनीक और तरीकों को अपनाकर अब अधिक उत्पादन ले रहे हैं। आज हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में जो भी थोड़ी बहुत आत्मनिर्भरता दिखाई देती है उसमें सूचना और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। इस सूचना ने भारत में कृषि क्षेत्र को उन्नत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे बारिश का पूर्वानुमान लगाना हो या फसल की उन्नत तकनीकी की जानकारी हो। कंप्यूटर के युग में यह काम आसान हो गया है। गांव-गांव में मोबाइल टावर, कंप्यूटर, इंटरनेट के जाल फैलने से जरूरी सूचनाएं भेजना अब और भी आसान हो गया है। किसानों तक खेती की उन्नत और नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए कृषि विभाग, अनुसंधान एवं कृषि से संबंधित संस्थाएं द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लेकिन कृषि सूचना प्रौद्योगिकी जो तकनीक है उनका एक विशेष तरह का महत्व है। इससे बहुत सारे किसानों को एक ही समय में कृषि की जानकारी दी जा सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कि किसानों के हित के लिए किस किस तरह के कृषि संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई कृषि की उन्नत तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके किसी से बात करके आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत सरकार कृषि मंत्रालय का एक फ़ोन नंबर है, आप अवश्य लिख लें, 1800180551। मैं वापस बोलता हूँ, 1800180551, यानी 1800-180-1551। ये एक फ़ोन नंबर है जिस पे आप कोई भी कॉल करेंगे तो आपकी कॉल का कोई पैसा नहीं मिलेगा, निःशुल्क है और कहीं से भी आप मुफ्त में बात कर सकते हैं। खेती बाड़ी से संबंधित सभी समस्याओं के निदान हेतु इस पर आपको विशेषज्ञों की सलाह जानने के लिए निःशुल्क टेलीफोन संख्या पर आप सातों दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कभी भी डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र तथा राज्य कृषि विभाग भी इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास दूरदर्शन है तो दिल्ली दूरदर्शन पर कृषि दर्शन कार्यक्रम भी, कृषि केंद्र फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से भी किसानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेषज्ञों से वार्ता करवाई जाती है, तो आप इन कार्यक्रमों की लाभ उठा सकते हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण बात आजकल जो चलती है कृषि संचार प्रौद्योगिकी में, वो है कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग कैसे किया जाए। हालांकि किसान भाइयों, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों के पास में कंप्यूटर इंटरनेट की उपयोगिता बहुत कम है, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि या तो आपके कोई बच्चे कहीं शहरों में पढ़ रहे हों, गाँव में पढ़ रहे हों, तो कहीं पर भी इस कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग, आज जब मोबाइल आए हैं तो इनका प्रयोग बड़ा आसान हो गया है और यहाँ पर कृषि से संबंधित इतनी सूचनाएं हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट का कृषि में प्रयोग विभिन्न

तरीकों से किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट पर मौसम संबंधी सूचनाएं भी उपलब्ध है, बाजार भाव आदि की जानकारी भी उपलब्ध है। अगर किसी के पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है या फिर किसी निकट के कंप्यूटर इंटरनेट केंद्र से, यह इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्रों की वेबसाइटों पर विभिन्न फसलों से संबंधित नवीनतम अनुसंधान, विकसित तकनीकों तथा नवीनतम सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा वेबसाइट योजना चलाई जा रही है, जिसमें कृषि की नवीनतम जानकारी उन वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जा रही है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जिस तरह की वेबसाइट और कार्यक्रम है इंटरनेट के ऊपर। जब आप जाएंगे तो एक क्रॉप इन के नाम से एक कार्यक्रम चलता है, एग्री मित्रा के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, एग्रोपीडिया 2 के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, एप्पल प्रोजेक्ट के नाम से कार्यक्रम चल रहा है। इन सभी की वेबसाइटें उपलब्ध है और ये सब ऐसी तकनीक और इंटरनेट के सहारे खेती में मदद कर किसानों का जीवन स्तर सुधारने और उनके विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्रॉप इन वेबसाइट और मोबाइल टेक्नोलॉजी के सहारे किसानों को उन्नत कृषि के तरीके और सुझाव देता है। वहीं एग्री मित्रा किसानों को मोबाइल पर मौसम के अनुकूल फसल की जानकारी देता है, जबकि एग्रोपीडिया एक ऐसा वेब है जहाँ खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी उपलब्ध है। ऐसे किसी प्रकार की जानकारी के लिए अब तक एग्रोपीडिया वेबसाइट पर करीब 10,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसमें आप भी रजिस्ट्रेशन करा के समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर कुछ खोजी वेबसाइट भी उपलब्ध है, जिनके खोज विकल्प में आप अपनी समस्या को लिखकर इससे संबंधित समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह भी है कि इंटरनेट के माध्यम से आप किसी विषय विशेषज्ञ और किसी संस्थान को संदेश भेजकर सीधा संपर्क करके समस्या के बारे में विचार विमर्श बिना किसी विलंब के किया जा सकता है। कंप्यूटर की भाषा में इसे ईमेल भी कहते हैं। और इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों के माध्यम से आप देश और विदेश की मंडियों में बाजार भाव को घर पर बैठे मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह की सूचनाएं जब आपके पास उपलब्ध होगी तो आप अपने खेती से संबंधित सही निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त किसान भाइयों, अभी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक फार्मर पोर्टल की शुरुआत की है, कि तो खेतों तक सूचना क्रांति का लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को मोबाइल संदेश भेजने के लिए इस फार्मर पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से किसान कृषि, उद्यान, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी तमाम प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी अपने कृषि जलवायु खंड के अनुसार कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। फार्मर पोर्टल के माध्यम से किसानों को बगैर किसी देरी के कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों आदि के विषय में त्वरित जानकारी दी जाएगी। अब फार्मर पोर्टल से संदेश प्राप्त करने के लिए किसान अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं ही कर सकता है। किसान के मोबाइल नंबर का पोर्टल में जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही उसे कृषि संदेश सेवा का लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। किसान अपनी जरूरत के अनुसार SMS सेवा प्राप्त कर सकता है। खराब मौसम से उपजी परिस्थितियों से निपटने में सहायता प्राप्त होगी। कीट रोग से फसल की सुरक्षा के साथ साथ उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने में मदद प्राप्त होगी। इस तरीके से ये एक आसान वो चीज़ है जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप भी इस पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे www. फिर farmer.gov.in पर आपको लॉगिन करना होगा। ये आप किसी कंप्यूटर साइबर कैफे की सहायता से भी आप जाकर कर सकते हैं। जब आप इस पर लॉगिन करेंगे तथा वहाँ पर एक आपको दिखाई देगा कि किसान SMS का एक नंबर होता है या किसान SMS की एक सूचना होती है, आप उसको क्लिक करें। इसके बाद वेब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। वेब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर मोबाइल बेस्ड सर्विस कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर है, उम्र है, शैक्षणिक योग्यता है, कृषि जोत कितनी है, इतना आप लिख दें। इसके बाद SMS का माध्यम वहाँ कई तरीके से है कि अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी का लिख दें, अंग्रेजी में चाहते हैं तो अंग्रेजी में लिख दें, उस तरह का अंकित करें। इस प्रक्रिया के पश्चात आप कृषि, पशुपालन, मछली पालन, उद्यान संबंधी जानकारी के लिए उसी सेक्टर पर जाकर फसल और पशुपालन के ऑप्शन पर क्लिक करें। पूर्ण जानकारी भरकर जब आप रजिस्टर पर क्लिक करने पर संबंधित के मोबाइल पर एक कोड नंबर आएगा और उसको भरने पर किसान का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फोन पर अपने आप ही खेती बाड़ी की जानकारी का नियमित संदेश मिलेगा। और अगर आप इस चीज़ को करवाने में इस तरह के आपको अगर परेशानी महसूस होती है

0: आपके पास में कंप्यूटर और इस तरह की सुविधा अगर आज नहीं है, तो आप जैसा मैंने आपको पूरब में भी बताया था कि एक किसान कॉल सेंटर है जिसपे निःशुल्क नंबर है 1800-180-1551 पर आप संपर्क करें, या आपका जो जिले के उपनिदेशक हैं कृषि विस्तार आप उनसे संपर्क करें, या आपके जिले के जो परियोजना निदेशक हैं आप उनसे संपर्क करें, तो उनके माध्यम से और उनकी सहायता से भी आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसे एक महत्वपूर्ण सुविधा का आप जो कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, कुछ जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि इस तरह की वेबसाइटें आज हर विभाग ने, चाहे आपका केंद्रीय सरकार का विभाग हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग है, कृषि मंत्रालय का है, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारत सरकार कृषि मंत्रालय का संस्थान है, कृषि विभाग जो है विभिन्न राजस्थान सरकार के, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के या हरियाणा सरकार के, इन सभी की जब आप खोज वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको इनकी विभिन्न संबंधित विभागों की वेबसाइट मिलेगी और इन वेबसाइटों के ऊपर आपके जिले के अनुसार, आपके जलवायु खंड के अनुसार और किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही है आपके संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की, उनकी तमाम जानकारी आपके लिए उपलब्ध होगी। तो इस तरीके से जब आप अगर इनकी सारी जानकारी लेंगे, जैसे आपके मैं उत्तर प्रदेश से उदाहरण दे दूँ, इसका www.agriculture.up.nic.in ये एक आपकी वेबसाइट है जिसमें आप अपने यहाँ के तमाम तरह के जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं कृषि संबंधित वो आपको मिलेगी। इसी तरीके से जो राजस्थान सरकार से संबंधित किसान हैं उनके लिए www.rajasthankrishi.gov.in एक आपकी जो वेबसाइट है इनके ऊपर करें, और जो भी आप जानकारी चाहना चाहते हैं, अगर आप ICR के संबंध में कुछ जानकारी पाना चाह रहे हैं तो www.icar.org.in एक जो ये है अपना वेबसाइट का पता है, इन पे आपको जानकारी मिलेगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपको तमाम तरह की जानकारी आज इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, और जैसे कि हम सरसों अनुसंधान केंद्र की हम बात करें, अगर आप सरसों से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारे निदेशालय की ओर से भी एक वेबसाइट है www.drmr.res.in, तो इन पर आपको सरसों की नवीनतम जानकारी मिल जाएगी और भी कई अन्य वेबसाइटें जब आप कंप्यूटर का उपयोग करेंगे तो आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि असीम संभावनाएं हैं कि कृषि संचार जो प्रौद्योगिकी है उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको जानकारी, और ऐसा आप जानते ही हैं किसान भाइयों, जब तक आपको अगर सही समय पर सही जानकारी मिलेगी तो आप अपनी खेती में अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय कर सकते हैं, कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
1: भैया अभी आप जानकारी ले रहे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा थे, कृषि प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व, हमें उम्मीद है इनकी दी हुई जानकारी को लाभ हमारे किसान भैया बहन जरूर उठाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको आनंद दिखा रहे हैं सत्यनारायण शर्मा के स्वर में जालू गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं सत्यनारायण शर्मा के सर में जालू गीत को शिव वृंदावन धाम अपार। भैया फसल बीमा योजना या की जानकारी तो आपने सुनी ही होगी। देखिए बड़ी मेहनत से बड़ी अपनी कहो जाए ना पसीने की गाड़ी की कमाई जो है हम अपनी खेती बाड़ी में लगा में है उत्पादन करवे के काज है कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा तो हम कछु आर्थिक लाभ भी है जाएगा। लेकिन कभी कभी कहा हुआ है कि प्राकृतिक आपदा कछु ऐसी आ जावे बेमौसम बारिश आ गई कभू फसल पे जंगली जानवर घुस गए या कोई क्षति सूखा पड़ गो तो किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आ जावे तो फसल को जब नुकसान है जाए ना तो काऊ पे आरोप भी ना लगाया जाए सिर पकड़ के बैठ के रूवे पड़े। तो भैया जाके काजे अगर हम ध्यान रखें तो फसल बीमा योजना कि अगर फसल की हम बीमा करा लें तो भैया बहुत कम आपकी पूंजी से जो आप छोटी सी एक जैसे कहो जाए ना कि 100 में से अगर आपने 20 रुपया किस्त देते रहे और अपना जमा करते रहे और सरकार की ओर से जब फसल बीमा योजना है जावे तो जो प्राकृतिक आपदा आवे तो अपनी फसल की जो नुकसान हुए बाको आर्थिक पूर्ति फसल बीमा योजना के द्वारा है जावे तो कम से कम हम आगे की फसल लेवे के लिए अपने साधन को इकट्ठा कर पाएं और दोबारा उत्पादन करें तो जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हुए। तो भैया जरूर जरूर कराना चाहिए अपने फसल को बीमा। इन्हीं जानकारी के साथ अब हमारा किसान ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सम्पन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

महेशगढ़ भी राजू और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने जांबाज फिल्म से ये भक्ति रचना सुनी। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों को फिल्म है इलाका।

ये थे अनूप जलोटा और साथ ही फिल्म थी अग्नि। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी

0: कहीं कहीं मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवा में जगदीश प्रसाद पै से उनको सुरचित काव्य पाठ।
1: बेशक बिनती है बड़ी, बेशक बिनती है बड़ी, पर कर पर उपकार, काम करो तुम भलाई, लालच को दो मार, काम करो तुम भलाई, लालच को दो मार, लालच को दो मार, लोभ तो मान घटावे, लालच को दो मार, लोभ तो मान घटावे, संयम नियम और अनुशासन शान बढ़ावे, संयम नियम और अनुशासन शान बढ़ावे, मन में धीरज धरो, मन में धीरज धरो, वक्त बदले पल भर में, जो समय है ये पल भर में बदल जाता है, मन में धीरज धरो, वक्त बदले पल भर में, और लालच तज जगदीश, लालच तज जगदीश, जियो सादा जीवन में, लालच तज जगदीश, रहो सादा जीवन में, रहे निरोगी सुखी सब, हे मेरे करतार, रहे निरोगी सुखी सब, हे मेरे करतार, आपस में मिलके रहें, आपस में मिलके रहें, बढ़े परस्पर प्यार, बढ़े परस्पर प्यार, काम हम करें भलाई, बढ़े परस्पर प्यार, काम हम करें भलाई, और मन अपने को रखें साफ, मन अपने को रखें साफ, नफरत दें मिटाई, मन अपने को रखें साफ, नफरत दें मिटाई, मिलके सबके साथ चलामे जीवन नैया, मिलके सबके साथ चलामे जीवन नैया, और सब समान जगदीश प्यारते बोलो भैया, सब समान जगदीश प्यारते बोलो भैया, साइकिल की सवारी, साइकिल की सवारी सस्तो साधन जान, बहुत ही सस्ता साधन है, साइकिल की सवारी सस्तो साधन जान, और तन में आवे कसावट ना कोई भी हान, तन में आवे कसावट ना कोई भी हान, ना कोई भी हान, हवा की गजब सवारी, ना कोई भी हान, हवा की गजब सवारी, और मैक मिलन कर याद, मैक मिलन जिन्होंने सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किया था, उसको हम याद करते हुए कहते हैं कि मैक मिलन कर याद, जाने रची सवारी, खोजी जन को नाम चले या सुंदर जग में, जो नई नई बातें खोजता है उनका ही नाम इस दुनिया में अमर है, खोजी जन को नाम चले या सुंदर जग में, और चलते को जगदीश मिले पथ या जीवन में, चलते को जगदीश मिले पथ या जीवन में, और करते को जगदीश मिले फल या जीवन में, मोबाइल या बखत में, मोबाइल या बखत में अचरज को विज्ञान, मोबाइल या बखत में अचरज को विज्ञान, और पल में पामे खबर हम, जाने सकल जहान, जाने सकल जहान, वार दिन मास बढ़ावे, जाने सकल जहान, वार तिथि मास बढ़ावे, समय साल के संग पसंद के गीत सुनावे, मोबाइल को बेमतलब उपयोग न कीजिए, मोबाइल को बेमतलब उपयोग न कीजिए, और सूरज लख जगदीश, सूरज लख जगदीश, मजा प्रकृति में ही लीजिए, सूरज लख जगदीश, मजा कुदरत को लीजिए। अब एक गीत जो धरती मैया पे है,

में है। बोलो धरती मैया की जय, बनी सब चीज इसी में है। अब एक गीत धरती मैया में पेड़ लगाने लिए कहता हूँ। धरती मैया करे पुकार, गलत

संसार, धरती पे तुम वृक्ष लगाओ, धरती पर तुम पेड़ लगाओ, घनों करें उपकार। ये जो पेड़ हैं हमारे ऊपर बहुत ही घनों उपकार करें। धरती पे तुम पेड़ लगाओ, घनों करें उपकार। छाया फल आख

ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत अभी आपने जगदीश प्रसाद पे थे, उनको स्वरचित काव्य पाठ सुनो। और अब ये के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BV-GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत

0: दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVG रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
4: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन

0: स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं गांव शिरटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे और संगीता शिंदे, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, गांव नगलापोला से धनी राम भूरी, जानू, नमन, रमेश, नगीना और उनके परिवारीजन, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि और मायरा सुरेशे, कासम कॉलोनी सनावस से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना, करणवीर हाउस बुचो कनेचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिम्मू, एकम दमन और अभिजोत, गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शुभांश वर्मा, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठल लाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकेता और उनके माता पिता, पैठण से शेख चांद मामू, अदनान और नुमान, शेख फूर खान, शेख गफूर खान और जकिया बाजी, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, पीहू, कृष्णा, राधिका, पवन, करण, नमन और इनके परिवारीजन, बाबाकुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान, बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा, कल्याण मुंबई से किशोर हिबराले, सुजाता हिबराले और प्रतीक हिबराले, गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, गांव कुमोदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और इनके साथी, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके माता पिता, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, आप हैं दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, पद्माटा किस निपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधरा इंगले, राजवी और समस्त परिवारीजन, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जजोरिया और गुड्डू, तिरुपति नगर नांदुरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक, निंडोरी नाशिक से विशाल गवली, सोनाली, समर्पण और भक्ति गवली, अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सबके लिए लता मंगेशकर और कुमार सानू को, गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशक जतिन ललित, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में सुना। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारी। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार।

कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर, सिद्धेश्वरनगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधा रामटेके और शव्या रामटेके, डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले रोहिणी दले सविता अनिकेत ऋषिके जीविका और सानिका दले, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू और पप्पी भाटिया, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल उषा पाटिल निवृत्ति क्षीरसागर और संजय चौहान, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार संध्या कीर्ति कुमार और डीकेश साहू, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा नई दिल्ली से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक और मधु नायक, वटवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे कमल दिव्या जय हागे और उनके परिवारीजन, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा गर्मा और हर्ष आहूजा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक और स्वाति, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल स्वाति जायसवाल देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, कोकहा भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष और नंदिनी जंघेल। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को, फिल्म है बदलते रिश्ते, गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बदलते रिश्ते इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और अब आप सुनेंगे आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित को। फिल्म है वेलकम। पसंद भेजने वाले श्रोता हैं वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, राजनगर कांति निकेतन से रुद्र प्रताप गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, शारदा गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और दादा ठाकुर, नई दिल्ली से हैं गुरमीत सिंह मीता, चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन और उनके परिवारीजन, गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा, नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल बाठे, तेलंगाना मुंगेर से मोहम्मद बुरहुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, साइमीरा अजमीन गुड़िया, समतानगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे, निशांत जगताप, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता।

ये थे लता मंगेशकर और कुमार सानू। फिल्म थी सलमा पे दिल आ गया। गीत सावन कुमार का था, संगीत निर्देशक थे आदेश श्रीवास्तव। हमें जो संदेश मिले उनके नाम है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आप हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नास, सलमा नास, असद, अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन और उनके परिवारीजन। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फणीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देवी करानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। गडकेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और उनके परिवारीजन। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार और उनके परिवारीजन। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीणी। वाणेखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपान तायडे, वसंतराव भोजने और पी एस नोहनकर। रंगोली राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता और उनके परिवारीजन। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर की आवाज़ों में यतीम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत हसन कमाल का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब सुनते हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म है स्वतन।

ये थे लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़। फिल्म थी शहंशाह। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे अमर उत्पल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस. हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ. शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बुक योर टिकट्स नाउ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में की फिल्म से. आज की फिल्म है धुरंधर. पहले सुनिए इस फिल्म में इरशाद कामिल और साथियों को.

और अब इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी धुरंधर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कल 2 जुलाई में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और AI तकनीक। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारा टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-12-22-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और AI तकनीक। श्रोताओं, यदि आप इस तकनीक के द्वारा किए जाने वाले उपचार के विषय में जानना चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी से, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा कल गुरुवार 2 जुलाई 2026 और दिन में 12 बजे से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

एफएम 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क

0: सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी

0: ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा

0: कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006

0: बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

आतिफ की आवाज़ में जहर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई, गीत गुलजार का, संगीत निर्देशक खय्याम।

ये थे उदित नारायण और साधना सरगम। फिल्म थी पृथ्वी। संगीत निर्देशक थे बिजू शाह। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग

0: डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 12 साल में, 11 साल 12 साल में, मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइज। ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
3: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना है, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खड़ा हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज

0: हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है।
1: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही या डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफाम बोलते हैं, गूगल एप्पल
0: जी
1: वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है, वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
0: जी
1: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
0: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो। लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं, भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है। आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
1: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं, और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं, और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपये का भुगतान हुआ, वो भी
0: जी
1: एआई है।
0: जी
1: वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई के एक एप्लीकेशंस है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है, जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहाँ से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा, जो सबसे सस्ता है
0: जी
1: पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है, उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
0: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है,
0: जी
2: जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने,
0: जी
2: तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया, और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म। हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल
0: जी
2: जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी पुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में
0: जी
2: जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
0: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना इतना आसान हो गया।

0: कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
1: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए। तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन। वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है।
0: जी
1: लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स। आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड
0: जी
1: दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
0: प्रसून जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए, इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं। हमारे
1: जी
2: स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है।
1: जी
2: ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे
1: जी
2: 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
0: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
1: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया।
0: जी
1: सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग का बोलते हैं कि
0: जी
1: बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से। और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी
0: जी
1: करप्शन ये सब है, वो सब हट गए। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है। तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
0: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक

0: फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई। और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
2: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
3: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट, ओके एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई

0: प्रोडक्ट है, पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
0: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब, वो फेब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और ये इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉरपोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल हो या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था, इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
2: जी टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इंप्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के। के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी

0: वाले लोगों, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं, एफटीए के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के

0: को आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
1: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि
0: जी
1: ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है
0: जी
1: जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
0: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे अमीन साबरी, फरीद साबरी और साथी, फिल्म थी सिर्फ तुम। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों को, फिल्म है शराबी, शब्दकार अनजान, संगीत निर्देशक बप्पी लहरी।

ये थे अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, बाबला और साथी। फिल्म थी तहलका, गीत संतोष आनंद का था, संगीत निर्देशक थे अनु मलिक। इसी के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शंख ध्वनि में बांसुरी वादन। वादक कलाकार हैं भोलानाथ, तबले पर इनके साथ संगत की है तोताराम शर्मा ने। इसके बाद आप सुनेंगे राग ललिता गौरी में ख्याल गायन, कलाकार होंगे बिरजू महाराज। कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं भोलानाथ के बांसुरी वादन से राग शंख ध्वनि में।

अभी आपने राग ललिता गौरी में ख्याल गायन सुना। कलाकार थे बिरजू महाराज। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो

0: जनसंख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he's delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal.